नमस्कार, एफएमआर 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते असीं आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज दिन शुक्रवार है, शक संवत 1948 दे विशाख महीने दी 25 तारीख, तदनुसार ईस्वी सन 2026 दे मई महीने दी आज 15 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 ते 42 सैकेंड होए ने। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

श्रवण करूंगी भक्ति संगीत का प्रोग्राम वंदना। सवेरे 7 बजे FM न्यूज हेडलाइंस ते उस तो ठीक बाद जानकारी ते मनोरंजन नाल भरपूर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर जो चलेगा 8:30 बजे तक। सवेरे 8:30 ते पंजाबी खबरां ते 8:40 ते साडा सेगमेंट अड्डी टप्पा। सवेरे 9 बजे FM न्यूज हेडलाइंस तो ठीक बाद प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी लैके हाजिर हो जावांगे जिस दे विच तुसी भी वट्सएप ते अपने भेजे हुए वॉइस मैसेज यानी ऑडियो मैसेज दे जरिए बन सकते हो प्रोग्राम का हिस्सा। सवेरे 10 बजे FM न्यूज हेडलाइंस और उस तो ठीक बाद प्रोग्राम गीत बहार। 11 बजे दे न्यूज हेडलाइंस सुनने तो बाद इंजॉय करोंगे प्रोग्राम पंजाबी तड़का।

अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरै सो जीवे। परमात्मा दा नाम अमृत दी तरह, जो इंसान भी उस दे नाम ते ध्यान लाउंदा है, उस इंसान दा जीवन स्वर्ग बन जांदा है।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.7 दे नाल नाल 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी सर्वन कर रहे हो पगती संगीत दा प्रोग्राम वंदना।

0: बोलो पवन सुत हनुमान की जय।
1: दुनिया दे विच हुंदा उही है जो परमात्मा ने साडे लिए लिखिया हुंदा है, सोचिया हुंदा है। ते कई वारी परमात्मा ने ये लिखिया हुंदा है कि असी अपने सारे दुख भुल के सिर्फ ते सिर्फ उस परमात्मा दे विच अपना यकीन बनाई रखिए, विश्वास बनाई रखिए। चाहे उस परमात्मा नू असी अपने माता पिता दे रूप विच देखदे आ, मानदे आ, या फिर असी अपने दोस्त, मित्र, सखा या गुरु दे रूप दे विच स्वीकार कीता होया है। लेकिन जदों भी असी अखां बंद करके अपने मन दे विच उसनू याद करके ध्यान लगा के किसी भी दुचित्ती दा जवाब मांगदे आं, तां ओह सानू जरूर जवाब भी दिंदा है ते साडी मदद दे लई आप भी आउंदा है।

एफएम रेनबो दी कड़ी ते स्टोरी दे 7 बज चुके ने ते वेला हो गया एफएम न्यूज़ हेडलाइंस दा जो के तुसी सुनोगे बिल्कुल लाइव। पेश ने एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई दे दौरे ते होंगे। श्री मोदी ने नवी दिल्ली विच BRICS ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की मीटिंग विच हिस्सा लैण वाले विदेश मंत्रियों नाल मुलाकात की थी। चोण कमिशन ने पंजाब समेत 16 राज्यां अते केंद्र शासित प्रदेशां विच तीजे गेड़ च वोटर सूचियां की विशेष गहन सोध SIR करवाउण दा ऐलान किया है। रेलवे राज मंत्री रवनीत सिंह ने कहा है कि पंजाब विच रेलवे दा बेमिसाल विकास हो रहा है। उन्होंने अमृतसर तो अमृतसर अते पछमी बंगाल विच न्यू जलपाईगुड़ी विचकार हफ्तावारी अमृत भारत एक्सप्रैस रेल गड्डी नू हरी झंडी दिखा के रवाना किया। खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि खेतीबाड़ी मंत्रालय ने देश भर के पिंडां विच किसानां नूं खादां दी संतुलित वरतों बारे जागरूक करन लई एक मुहिम शुरू कीती है। सरकार ने कहा है कि देश भर विच कच्चे तेल LPG अते कुदरती गैस की उपलब्धता नूं यकीनी बनाउण लई प्रभावशाली कदम चुके गए ने।

नई सी ठंडी सी प्यारी सी ताजी सी सुबह और है ये एक नया सा सवेरा, सूरज की किरणें और है थोड़ा थोड़ा सा आज हवाओं का बसेरा और मुस्कुराता हुआ आपका ये चेहरा। मुबारक हो आपको ये आज का हसी सवेरा। सो जी नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग ब्लेस्ड पॉजिटिव एंड हैप्पी फ्राइडे मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सारे का ही बहुत बहुत स्वागत कर दिया और इस प्यारी जी शुक्रवार की सवेर कहते हैं कि शुक्र है शुक्रवार है। हाँ जी फाइनली जरा मंडे तो असी भारी जहा सफर शुरू किया सी। लो जी आगाज तो बाद कितने अंजाम तक भी पहुँच गए इस हफ्ते दे नाल ही। देखो फटाफट दिन बीत जाते हैं, समय इदा बीत जाता, पता कितने लगता है, पता लगता है जो घड़ी सामने हो जरा दुख वाला समा होंगे ना वह तो एक पल नहीं बीतता, सुख वाला तो खुशियां वाला जरा समा है ना फटाफट बीत जाता है। इस वजह करके एफ एम रेनबो थोड़ा साथ देता है क्योंकि एफ एम रेनबो दे नाल सारे काम छुमंतर हो जाते हैं, है ना। ठीक है मैं जिहड़ी वड्डी जी हाँ की है ना, चलो ठीक है इसी हाँ बरकरार रखते हैं और अगे लैके चलते हैं। टाइम हो गया है 7:05 और पूरे 38 सैकेंड, यानी कि टाइम हो गया है मॉर्निंग विश तो कर दी, मॉर्निंग विश तो इलावा का भी कोई टाइम है। हाँ जी टाइम हो गया है जी तुहाडे फेवरेट वाले शो का जिस विच हुंदी है इनफॉर्मेशन ते एंटरटेनमेंट दी डोज और ये जिहड़ा शो है गुड मॉर्निंग जलंधर है जी। सो उठो मुस्कुराओ ते वॉल्यूम अपने रेडियो दी थोड़ी जी फुल करो क्योंकि तुसी सुन रहे हो फिलहाल आकाशवाणी दा एफएम रेनबो ते माइक दे इस पासे फुल ऑन एनर्जी मोड दे विच ट्राई कर रही है एटलीस्ट आर जे पूजा तुहानी बैठी हुई है तुहाडे नाल गल्लां करन दे लई और इस प्रोग्राम दे विच जिस च हुंदी है इनफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट दी फुल ऑन डोज नाल दी नाल गल्लां बातां दा सिलसिला मैं ते कैरी फॉरवर्ड करदी ही हमेशा आ और उम्मीद भी करती हूँ कि तुसी भी मेरे नाल गल्लां करोगे, लेकिन फिलहाल 8:30 बजे तक करूँगी मैं ही तुहाडे नाल गल्लां और 8:30 बजे सुनोगे खबरां, 8:40 तो 9 बजे तक तुसी अड्डी नूं थोड़ा जिहा कष्ट दोगे अपनी नूं क्योंकि नचन टप्पन दे पंजाबी बीट सॉन्ग्स लैके आ जाऊँगी 8:40 तो 9 अड्डी टप्पा सैगमेंट्स और सवेरे 9 बजे फिर तो मेरे तो ही सुनूंगी एफ एम न्यूज़ हेडलाइंस और इस तो बाद शुरू करेंगे प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी जिस विच तुसी भी मैनू अपने फीडबैक दे सकते हो, लेकिन ये भी दस सकते हो और किड़िया चीज़ा तुहाड़े कोल दसन वाली है ने शेयर करन वाली है ने और नंबर तुहानू तो पता ही है, लेकिन एक बार फिर दसूंगी लेकिन 9 बजे तो बाद मतलब 9:02 ते। सो फिलहाल दिमाग च मेरे आ रहा है कि गल्लां बातें आप कर ली शुरू हजे कंप्लीट कीतियां ने हजे तो शुरू कीतियां ने ते इन्हां गल्लां बातां दे सिलसिले नूं आपां अगे लैके चलदे आं सोहणे जे गीत दे नाल क्योंकि सवेर दी शुरुआत प्यारी जी सवेर दे नाल होवे आई मीन गाने दे नाल होवे तां फिर ओह

में ऐसी ही रंगीली सजीली और अपनी धुन में रहने वाली। और मैनू लगदा कि इह सिर्फ मैं ही नहीं, तुहानू सारयां नू एदां ही होना चाहीदा है, क्योंकि सारा कुछ टाइम दे नाल बदल जांदा है। एवरीथिंग इज टेंपरेरी और टाइम दे नाल ते बदल जांदा है। इवन कि साडी खूबसूरती, जिस ते सानू कई बारी बहुत ज़्यादा माण भी हुंदा है, जो नहीं बदलता ना वो साडा मन है। और मन दे अंदर वो जिहड़ी चंचलता है ना, बच्चियां वाली शरारत करन दा जिहड़ा मन करदा है अंदरों अंदरों, वो कभी भी मरण ना दो, क्योंकि वो जरूरी है उसका जिंदा रहना। अगर वो ठीक ठाक है ना और खुश है, बस बाकी सब कुछ ठीक है। क्योंकि जदों भी जिंदगी दे विच असीं काइंड होना, मतलब थोड़ी नरमी चूज करते हैं, काइंडनेस चूज करते हैं बाकियों के लिए, मैनूं लगता बाद विच आउंदी है। क्यों नहीं असीं पहला खुद दे लई थोड़ी काइंडनेस चूज करिए, अपने नाल भी थोड़ी जी असीं नरमी बरतीए। हर गल ते जदों मन मार लैंदे आ, ते इदां सोचिया कदी जदों असीं इह कहिंदे आ कि साडे सारिआं दे अंदर परमात्मा दा वास हुंदा है, ते जदों असीं अपना मन मारदे आ किसी चीज़ दे लई, उदो साडे अंदर जिहड़ा परमात्मा बैठा है, उसका जिहड़ा अंश है साडी आत्मा दे अंदर, उसनू किन्ना क चंगा लगता होएगा। सो मैनू ये लगता कि परसनली जिहड़ी सैक्रीफाइस की भावना है बड़ी साडे अंदर हुंदी है ना, कईआं दे अंदर अजकल तो चीज़ किते ना किते ओके बाय बाय टाटा सी यू कर चुकी है, इमोशंस ते खत्म हो रहे ने अज दे टाइम ते। लेकिन जिन्हां च हैगे ने उन्हां च बड़े ओवरलोडेड ने, उन्हां दे लई इह जिहड़ा मेरा मंत्रा है या फिर सजेशन कह लो, अपना मन ना मारया करो। जो करन दा मन है ना वो कर लिया करो, किते जान दा मन है जाया करो, कुछ खान दा मन है खाया करो, किते अगर किसे ना गल करन दा मन है तो कर लिया करो। ये टाइम बीत जाएगा तो मुड़ के मलाल रह जाएगा। सो जो टाइम है वो होनी है, इसे पल दे विच जियो। और दिल दे विच जो भी अरमान ने इको दम ना सी, थोड़े थोड़े करके पूरे करते रहो। आखिर दिल दे विच जिहड़ा बच्चा है ना साडे छुपया होया, वो असल दे विच उस परमात्मा दी पुकार है। गॉट माई पॉइंट जी। सो गुड मॉर्निंग जलंधर दे विच मेरे नाल, यानी कि पूजा टोहानी दे नाल, ए सी मेरा अज दा थॉट ऑफ द डे।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

हाँ जी, की कह रहे हो? ट्रैफिक च फंसे हो? ट्रैफिक से तो मैं सवेरे 5:30 बजे फंस गई सी, हूँ तो 7:30 हो गए ने। टाइम हो गया जी 7:32 पूरे 6 सेकेंड। वैसे मैनू लगता है कि ये जो ट्रैफिक वाला ना सिस्टम है, ये सही हो रहा है वैसे हौली हौली साढ़े शहर के। तुहाडे शहर के हाल चाल किवें ने? चलो तुसी अपने भी दस दो ते ट्रैफिक दे भी दस दो। फिलहाल मेरा मतलब सी कहन दा, ट्रैफिक आ ना जिहड़ी ਉਹ ਤੰਗ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੂਥਲੀ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਲੈਟ ਮੀ ਮੇਕ ਇਟ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ

वेलकम बैक वंस अगेन। टाइम 8:13 और टाइम अगली न्यूज ने तो हर नाल शेयर करन दा है। न्यूज अगली ऐदा है कि भाई देखो, कुछ भी नवा करन दी कोई उमर नहीं है, किसी ने फिक्स नहीं की थी। अगर किसने कुछ करना है ते कर ही लेना है, जज्बा होना चाहिए। जिवें कि जज्बा है एक कपल दा, एक दंपति जिन्होंने बुढ़ापे दे विच आराम करन दी नहीं सोची, उन्होंने ये सोचा है कि आराम ना चुन के मैदान चुनिए। क्योंकि एक बार उन्होंने कहा सी कि ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, और कहिंदे मैं साबित करके दिखाऊंगा, मैं अपनी पत्नी दे नाल इस चीज़ नूं साबित करके दिखाऊंगा। और उन्होंने मैदान नूं चुन के ऐदां दा कारनामा किया कि हुण तक ये जिहड़ा कपल है 200 तो ज़्यादा मैडल जीत चुका है ऑन ग्राउंड। ਬਈ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਹੈਲਥ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਜਸਟ ਗਿਵ ਇਟ ਅ ਟਰਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਦਵੋ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਅਪਣਾਓ, ਔਰ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ अपने उस सपने नु पूरा करन दे लई। और वो जिहड़ा सपना है कुछ होर नहीं है, तुहाड़ी अपनी लाइफ नु ही बेहतर बनाउण दा। अगर होवे तां जीवन साथी नु अपने नाल जरूर शामिल करो। उहनां दी उमर ते है जी 70 साल तो ज्यादा, और उहनां दी वाइफ दी एज है 65। गल कर रही हां रोहतक दे पिंड मोखरा दे रहण वाले एक रिटायरमेंट कपल दी, जिन्होंने अपने शौक नु, अतर सिंह जी ने, और उन्होंने शौक सी मतलब खेडन दा, दौड़न दा, और लंबी जिहड़ी आपां लोंग जंप करदे आ, है ना, उन्होंने ये शौक सी असल च एथलीट बनन दा, जो कि चलो कामकार दे चलदे ओ नहीं कर पाए पूरा। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि जदों हुण जिंदगी च रिटायर हो गया, काम कर लिया सारी उम्र, या तो एक ऑप्शन है कि आराम दे नाल बैठो और दिन गिणो, घंटे गिणो जिंदगी दे, या फिर कुछ नवा सोचो ते करो, और उन्होंने सेकंड वाली ऑप्शन चुनी। उन्होंने लंबी जिहड़ी जंप है ते दौड़ दे अलग अलग फॉरमैट्स नू जाणिया पढ़िया, और हुण तक इन्हां अलग अलग फॉरमैट्स दे विच 136 नैशनल इंटरनैशनल मैडल जीत चुके ने। उन्हां तों प्रेरित होकर उन्हां दी पत्नी भी हैरान हुई, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी मैदान दे विच उतरां। शुरुआत उन्होंने की थी पति ने, और फिर उन्होंने घर तो हौली हौली वार्म अप करना शुरू किया उन्हां दी पत्नी जी ने। वो कहिंदे जदों मैं अपने हसबैंड नूं पसीना बहाते हुए देखती सी तो मैनूं चंगा लगता सी, मैनूं किते ना किते अच्छा लगता सी, इंस्पायर हुंदी सी मैं कि अगर ये कर सकते ने तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो उन्हां दी पत्नी वीरमती देवी भी अपने ही हसबैंड अतर सिंह तो प्रेरित होए, और बस वह भी जदों रिटायर होए उन्होंने भी ट्रैक ते कदम रखना चुनिया, बजाय कि घर बैठ के दिन गिनन दे। ते बस उन्होंने हुण तक रिले रेस दे विच 1500 मीटर दे विच उन्हां दी पत्नी ने 100 मैडल जीत लए ने। दोनों दे मैडल मिला के ये जिहड़ा कपल है 200 मैडल अपने घर लेके आ चुका है। और वह भी यही कहिंदे ने कि फिटनेस ज़्यादा वधिया लगती है, कि घर का जिहड़ा संतुलित भोजन है वह असीं दोनों खांदे आ, फ्राइड अवॉइड करते हैं, बाहर का अवॉइड करते हैं, और दोनों एक दूसरे का पूरा साथ देंदे हाँ। बस ऑप्शंस दो ही होंदियां ने, या तो बैठ के साहां नूं गिण लो, या फिर साहां दी रेस नूं ट्रैक ते लैके आए और जिंदगी दी रेस दे विच सब तो अगे निकल गए। पूजा टोहानी दे नाल इंजॉय द नेक्स्ट ट्रैक।

0: ते हुन तुसी सुनोगे खबरां।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ते इटली दे 6 दिन दौरे लई रवाना होणगे। श्री मोदी ने कहा कि इस साल भारत की प्रधानगी हेठ ब्रिक्स एक समावेशी विश्व व्यवस्था बनाने लई रल के काम करेगा। तेल कंपनियां ने पेट्रोल ते डीजल दीआं कीमतां विच 3-3 रुपए प्रति लीटर का वाधा किया है। सरकार ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम तहत सोने की दरामद ते 100 किलोग्राम की सीमा तय की है। भारत की वुशु खिडारन अपर्णा दहिया ने मकाऊ में हुए 11वें सांडा विश्व कप में सोने का तमगा जितया। IPL क्रिकेट में बीती रात मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकटों नाल हरा दिता है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ते इटली दे 6 दिन दौरे लई रवाना होणगे। अपने 5 देशों दे दौरे दे पहले पड़ाव ते श्री मोदी अज UAE पहुंचणगे, जिथे उह राष्ट्रपति शेख मुहम्मद बिन जायद अल नहायन नाल मुलाकात करनगे। दोवें नेता दुवल्ले मुद्दों, खास करके ऊर्जा सहयोग अते नाल ही आपसी हित दे खेतरी ते अंतरराष्ट्रीय मुद्दों ते भी चर्चा करनगे। दौरे तो पहला मीडिया नाल गलबात करदिआं विदेश मंत्रालय विच पछम मामलों बारे सकत्तर असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोवां देशों के संबंधों का एक मुख थम है। उन्होंने कहा कि पिछले साल UAE भारत के कच्चे तेल का चौथा सब तो वड्डा स्रोत सी। भारत अपनी LPG का लगभग 40% UAE तो दरामद करता है। भारतीय कंपनियां ने UAE दीआं तेल कंपनियों में निवेश किया है। ये दोवां देशों विचकार वध रही ऊर्जा साझेदारी का संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा मौके UAE विच भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा अजे समय हो रहा जदों यह खेत्र बेमिसाल विकास और चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस साल भारत की प्रधानगी हेठ ब्रिक्स बहुपक्षीवाद को मजबूत कर, निरंतर विकास को उत्साहित कर, आर्थिक मजबूती वधाने, एक समावेशी विश्व व्यवस्था बनाने लई रल के काम करेगा। नवी दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के मुखियों नाल गलबात करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों में सहयोग वधाने, आलमी दखण दीआं इच्छावां नूं पूरा करन लई एक महत्वपूर्ण मंच वजों उभरिया है। यह मीटिंगां नवी दिल्ली में चल रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की मीटिंग दौरान हुईयां। इस तो पहला ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की मीटिंग में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि शांति ते सुरक्षा विश्व व्यवस्था के केंद्र में ने। उन्होंने कहा कि हाल ही के टकरावों ने गलबात और कूटनीति की महत्ता को होर भी बढ़ा दिता है। तेल कंपनियां ने पेट्रोल ते डीजल दीआं कीमतां विच 3-3 रुपए प्रति लीटर का वाधा कर दिता है। दिल्ली में हुण पेट्रोल की कीमत 94.70 रुपए प्रति लीटर तो वध के 97.77 रुपए प्रति लीटर, तो डीजल की कीमत 87.67 रुपए तो वध के 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इस तरह मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.68 रुपए प्रति लीटर, तो डीजल की कीमत 93.14 रुपए प्रति लीटर हो गई है। यह फैसला कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों उछाल के मद्देनजर लिया गया है।

सरकार ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम तहत सोने की दरामद से 100 किलोग्राम की सीमा तय की है। यह स्कीम गहणियां के बरामदकारा जीरो ड्यूटी से कच्चे माल की दरामद करने की आग्ञा दिंदी है। विदेश व्यापार बारे डायरेक्टोरेट जनरल ने एक जनतक नोटिस विच कहा है कि बरामदकार इस स्कीम तहत एक समय विच वध तो वध 100 किलोग्राम सोना बिना किसी ड्यूटी के दरामद कर सकते हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ने पहली बार के बिनेकारा लिए उन्होंने कार्यशील स्थिति और समर्था का मुलांकन करने लिए निर्माण प्लांटा का भौतिक निरीक्षण करना लाजमी कर दिता है। यह भी कहा गया कि दोबारा महसूल मुक्त सोने की दरामद के योग होने लिए किसी कंपनी को अपने पिछले बरामद टीचे की घट्टो घट 50% बरामद पूरी करनी होगी। पारदर्शिता बनाई रखने लिए खेतरी दफ्तर वालों डायरैक्टोरेट को एक महीनावार रिपोर्ट जमा करवानी होगी। पहला इस स्कीम तहत सोने की दरामद से कोई सीमा नहीं सी। एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ईडी ने कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास को जबरन वसूली रैकेट चलाने और मनी लॉन्ड्रिंग के दोषों में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने कल कोलकाता के सीजीओ कॉम्पलैक्स में 10.5 घंटे तो वध समय की पूछगिछ करने के बाद उन्होंने गिरफ्तार किया। शांतनु सिन्हा अज अदालत में पेश किया जाएगा। ये खबर तुम आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक हैंडल है @AIR RNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब से साडा चैनल है @AIR जलंधर। नैशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट प्रीख्या दियां तैयारियां लई कल शाम सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निवास स्थान से एक उच्च पदरी मीटिंग हुई। नीट प्रीख्या के सुचारू और प्रभावशाली ढंग नाल कराने के वख-वख पहलुओं ते वेरवे सहित चर्चा की गई। मीटिंग में उच्च सिक्ख्या बारे सकत्तर, स्कूली सिक्ख्या सकत्तर, राष्ट्रीय टैसटिंग एजेंसी के डायरैक्टर जनरल, CBSE के चेयरमैन, केंद्रीय विद्यालय संगठन ते नवोदया विद्यालय समिति के कमिश्नर समेत होर सीनियर अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान CBI ने नीट UG 2026 प्रीख्या पेपर लीक मामले में 2 होर मुलजमान गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने पिछले 24 घंटे में देश भर में 14 थावां तलाशी ली है। एजेंसी ने दसिया कि गिरफ्तार किए गए 2 मुलजम अहिल्या नगर के धनंजय लोखंडे और पुणे के मनीषा वाघमरे ने। पहला इस मामले में 5 मुलजमान गिरफ्तार किया गया से, जिन्हों जयपुर तो 3 और गुरुग्राम से नासिक तो 1-1 मुलजम शामिल है। कांग्रेस के VD सतीशन सोमवार केरलम के मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकाई जाएगी। UDF के सूत्रों ने दसिया कि तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री के नाल पूरा मंत्रिमंडल सहुं चुकेगा। इस दौरान UDF भाईवाला में नवे मंत्रियों और उन्होंने विभागों बारे जोरदार सलाह मशवरा जारी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 36 घंटे में मीह तूफान और बिजली डिगण कारण 111 लोगों की मौत हो गई है और 200 के करीब जख्मी हुए ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों से संबंधित अधिकारियों को घटनाओं वाली थान का जायजा लेने के निर्देश दिए ने। उन्होंने कहा कि मुआवजे संबंधी जानकारी हर 3 घंटे बाद दी जाए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर प्रदेश में आए तूफान कारण हुए भारी जानी ते माली नुकसान से संवेदना प्रगट की है। क्रैमलिन ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे एक संदेश में श्री पुतिन ने कुदरती आफत में मारे गए लोगों के परिवारों प्रति संवेदना प्रगट की ते जख्मियों ते पीड़ितों के छेती ठीक होने की कामना की। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने अनिल धीरूभाई अंबानी ADA समूह दीयां कंपनियां विचों एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड खिलाफ़ दर्ज मामले के संबंध में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु में 7 थावां ते छापे मारे ने। एक बयान अनुसार कंपनी के उस समय के CEO मुख्य वित्तीय अधिकारी और डायरैक्टर के घरों से तलाशी ली गई है जो 2015 से 2017 विचकार कंपनी में काम करते सन। CBI ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी की अगवाई वाले रिलायंस समूह खिलाफ सरकारी खेत्र के बैंकों और LIC वालों 1000 करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए ने। भारत की विशु खिडारन अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में हुए 11वें सांडा विश्व कप में औरतों के 52 किलोग्राम भार वर्ग में सोने का तमगा जितया है। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फूंग नगा नगो को सीधे सैटों में हराया। IPL क्रिकेट में बीती रात धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसीएशन स्टेडियम में खेडे गए मैच में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकटों से हरा दिता है। पहला बल्लेबाजी करते पंजाब ने 8 विकटों से 200 दौड़ा बनाई। मुंबई ने 4 विकटों के नुकसान से 1 गेंद बाकी रहिंदे 201 दौड़ों का टीचा हासिल कर लिया। तिलक वर्मा प्लेयर ऑफ

मैच चुनिया गया। अज लखनऊ विच शामी 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स नाल होएगा। इजराइल ते लेबनान के अधिकारियों ने वाशिंगटन विच तीजे गेड़ की शांति गलबात की है। विचार वटांदरा हिजबुल्ला नूं खत्म करन अते दोहां देशां विचकार संबंधां नूं बेहतर बनाउण ते केंद्रित रहा। गलबात हालां भी जारी है, हालां तक किसी महत्वपूर्ण प्रगति की कोई खबर नहीं है। अंत विच चोणवीं खबरां एक बार फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज संयुक्त अरब अमीरात UAE नीदरलैंड स्वीडन नॉर्वे ते इटली दे 6 दिन दौरे लई रवाना होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस साल भारत की प्रधान खेट ब्रिक्स एक समावेशी विश्व व्यवस्था बनाने लई रल के काम करेगा। तेल कंपनियां ने पेट्रोल ते डीजल दी कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर का वाधा करन दा ऐलान किया है। सरकार ने एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम तहत सोने की दरामद ते 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। भारत की वुशु खिडारन अपर्णा दहिया ने मकाऊ में हुए 11वें सांडा विश्व कप में सोने का तमगा जीतया है। तो IPL क्रिकेट में धर्मशाला विखे खेडे गए मैच में बीती रात मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकटों से हरा दिता है। इस के नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रदेशक खबरों का बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 होएगा। नमस्कार।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत ते मुताबिक बुलाया जावेगा।

Musically yours and only yours और फिलहाल जरा time है वो ये कह रहे कि it's totally musical time यानी कि हुण time हो गया है तुहाडी अड्डी नूं थोड़ा जा टपाउण दा टप्पण दे मौके देण दा यानी कि शुरू करन जा रही हाँ मैं यानी कि तुहाडी दोस्त पूजा तुहानी 8:42 हो चुके ने और ठीक 9 बजे तक ये जेड़ा नॉन स्टॉप पंजाबी बीट म्यूजिक का सिलसिला चलेगा इस सेगमेंट रहेगा अड्डी टप्पा तो चलो फिर करते हैं जी तुहाडे वर्कआउट सैशन की शुरुआत वधिया जे गीतां दे नाल सो आ रहा है जी फर्स्ट ट्रैक इन अड्डी टप्पा स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-44-54 तो प्राप्त की जा सकती है। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

रेडियो रेनबो की घड़ी ते सवेर दे 9 बज रहे ने ते वेला हो गया FM न्यूज़ हेडलाइंस दा जो कि तुसी हुणे सुणोगे बिल्कुल लाइव।

पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे अते इटली दे 6 दिना दौरे लई रवाना होंगे। तेल कंपनियां ने पेट्रोल अते डीजल दी कीमतां विच 3-3 रुपए प्रति लीटर दा वादा कीता है। सरकार ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम तहत सोने की दरामद ते 100 किलोग्राम की सीमा तय की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 होर मुलजमान गिरफ्तार किया है। कांग्रेस के वीडी सतीसन सोमवार को केरलम के नवे मुख्यमंत्री वजो सहु चुकणगे। उत्तर प्रदेश विच पिछले 36 घंटिया विच मी तूफान अते असमानी बिजली डिगण कारण 111 लोकां दी मौत अते 200 दे जख्मी होण दी खबर है। खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि खेतीबाड़ी मंत्रालय ने देश भर दे पिंडां विच किसानां नूं खादां दी संतुलित वरतों बारे जागरूक करन लई एक मुहिम शुरू कीती है। मौसम विभाग वालों पंजाब ते हरियाणा विच 16 तो 19 मई तक जबरदस्त गर्मी पैण दा येलो अलर्ट जारी। भारत दी वुशु खिडारन अपर्णा दहिया ने मकाओ विच होए 11वीं सांडा विश्व कप विच सोने दा तमगा जितया। अते आईपीएल क्रिकेट विच बीती रात धर्मशाला विखे खेडे गए मैच विच मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स नू 6 विकटां नाल हराया। इस अन हुण तक दे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। अगला प्रोग्राम बस हुण तो कुछ कु पलां दे इंतजार दे।

हाँ जी, फिलहाल तो मैं बोल रही हूँ, तो मैं ये दसो कि ठंड लग रही है कि ठंड लग रही है, तो चाहे गर्मी लग रही है, लेकिन नाम तो सही सही गैस करो। हाँ जी, हाँ जी, गैस करो सही। नाम है जी पूजा टोहानी और फिलहाल कर रही है प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी। पंजाबी है तो वैसे दिल से भी होंगी है, तो मैं लगता है कि जिन्हें वॉर्म हार्टेड तो जिन्ना निग दिले पंजाबी होंगे ने, उन्हें कित होर मिलना औखा ही है ना। इस करके पंजाबी परिवारों की तो मिसाल दूर दूर है ही है फेमस। चाहे असं बाहर भी चले जाइए, असी परिवार के नाल रहिंदे आ, और मैं लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और यही सारिया चीज़ा देख के मैं यही चीज़ नोटिस की है कि हुण ते फॉरन दे विच जिहड़े गोरे ने वो भी फैमिली के कॉन्सैप्ट समझन लग गए ने और फॉलो करन लग गए ने। सो जी तुहाडी की सोच है दस सकते हैं, क्योंकि रेडियो ते आप सिर्फ गाने नहीं ना चलाते, असी गल्लां करते हैं। गल्लां करते हैं वह जिहड़ियां गूढ़ियां ने, ते उन्हां गूढ़ियां गल्लां दे पिछे कोई ना कोई मकसद भी हुंदा है, ते कोई कहानी भी हुंदी है। ते अगर इदां दी अपने परिवार दी कोई कहानी तुसी मेरे नाल सांझी करना चाहुंदे हो, तां जल्दी दे नाल फोन पिक करो, मतलब चको अपना फोन, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करो, भेज दिओ 9855101027 ते 9855101027 ते। कोई इदां दी गल, कोई इदां दी याद जिहड़ी तुहानू लगे कि अज शेयर करनी चाहिए, अज का टॉपिक बिल्कुल सही है कि अगर परिवार ना हुंदा ते इस मुसीबत दे विचों निकलना थोड़ा औखा हो जाना सी। इदां दे बहुत सारे, मैं लगता कि साड़ी ऑलमोस्ट जिंदगी दे विच अनकाउंटेबल इदां दे बहुत सारे चांसेस हुंदे ने, जदों जिथे परिवार साडे नाल खड़िया होया हुंदा ना, जदों असीं पिछे मुड़ के देखते हाँ उदों एहसास हुंदा कि चाहे लड़ाई होवे, झगड़ा होवे, डिफरेंस ऑफ ओपीनियन जिन्ने मर्जी होण, साडी एक मिनट दे लई भी ना बने, लेकिन जिहड़ा निग परिवार च है ना, वह परिवार च ही है। यानी कि कहिंदे आ ना कि रसोई दे विच चार भांडे खड़कणगे तो सही, तो पर मैनूं ये दसो रोटी अगर आपां खाणी है थाली दे विच कौली ना होवे, तो कोई तरी वाली सब्जी है थाली दे विच थोड़ी ना पा लांगे, कौली चाहीदी होएगी ना। ओके, तो जे मान लो थाली दे विच असी कुछ ग्रेवी वाला पा भी लिया, चम्मच तो बिना किवें खावांगे, चम्मच की भी लोड़ है। ओके, तो पानी पीने के लिए गिलास की भी लोड़ है, यानी कि भांडे असी रखते हाँ तो खड़कते हैं, लेकिन लोड़ है ना सानू, बस परिवार बीत गई है। हाथ दे विच उंगलां ने, पंजे उंगलों का साइज अलग अलग है, लेकिन हर उंगल का काम वखरा है। जदों असी हथ बंद करके वो मुठ्ठी बनाने तो मुक्का बनता ना, और दुश्मन असी चंकी तरह मज़ा सिखा सकते हैं ना। मुक्के का अपना मज़ा है, थप्पड़ का अपना मज़ा है, तो रुकण का अपना मज़ा है। चलो ये तो मेरिया गल्ला नहीं चलदिया रहनगिया, लेकिन हाँ जी तुसी किस सोच दे विचो। 9:13 हो गए ने, फोन चको, रिकॉर्ड करो मैसेज, तो आर जे पूजा टोहानी के नाल शेयर कर दिओ दिल अपना पंजाबी।

0: मैं क्या जी औखा है, क्योंकि पूजा तो फिर पूजा ही है। हाँ जी, वेलकम बैक। हर बंदे का अपना तरीका, अपना ही तरीका होंदा, बस तुहाड़ा अपना, मेरा अपना, और यही तरीका उसनू दूसरे इंसान तो वक्खरा बनाउंदा है। परिवार दे विच हर इंसान एक दूसरे तो वक्खरा होंदा है, और यही तो खूबसूरती है परिवार दी और हर बंदे दी। फिलहाल ये बंदी पूजा टोहानी है जी तुहाड़े नाल, और प्रोग्राम दे विच आ चुका है फर्स्ट वॉइस मैसेज। मैं सुनदी हां ते नाल तुहानू सुनाउंदी हां जी कित्थों आया है।
1: हेलो मैम जी।
0: हां जी,
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी।
1: तुसीं बहुत वधिया प्रोग्राम पेश करदे आ।
0: ठीक है जी।
1: आज तुसीं,
0: हां जी,
1: अज परिवारां ते गल कीती आ।
0: हां जी,
1: मैं कहांगा जेडे ना कठे परिवार आ उहनां दी कोई रीस नहीं है। रोटी ज्यादा खादी जांदी है, प्यार प्रेम ज्यादा हुंदा, नाले खर्चा घट हुंदा।
0: अच्छा जी,
1: तुसीं चंगीआं गल्लां करदे आ।
0: ठीक है जी,
1: तुहाडा प्रोग्राम जरूर सुणी जाया।
0: थैंक यू जी। बहुत चंगा कीता,
1: प्रोग्राम पेश कीता चंगा। अरे रुआ, सब कुछ खांदा है सानू। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। मैं निश्चल बोल रहा सगा जी अपने चंडीगढ़ तो,
0: शुक्रिया जी, शुक्रिया। तुसी अज पहली बारी प्रोग्राम च शामिल हो, और तुहानू गल्लां अगर चंगे लगे तो सानू भी तुहाडियां गल्लां चंगे लगे। बड़ी मासूमियत दे नाल तुसी सानू इह गल्लां दस के गए कि चुल्हे ते बनी हुई रोटी खाने आ सारे बह के रोटी। यह गल 100% सही है। कल्ले बैठो ना, ना मज़ा आता रोटी खाने का, ना स्वाद आता, तो ना मतलब मन जहा भरया भरया होंगे। यही जब दो चार जने इकट्ठे बह के रोटी खाते हो ना, तो मतलब मलो मल्ली ज़्यादा रोटी भी खाधी जाती है, तो वो फिर जो स्वाद आता है वो वक्रा ही होंगे। प्यार की गल हों, तो ये प्यार सानू परिवार चो मिलता है।

रचना साना सांझी की थी। मोहम्मद मुजफ्फर मोहम्मद अरमान पिंड खुर्द जिला मलेरकोटला तो ये भेज रहे ने मैसेज। बाकी सारे ही श्रोतों ने बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने भी मैसेज किए, लेकिन हुण होर समा नहीं हैगा जी प्रोग्राम दे विच, सो प्रोग्राम इत्थे ही वाइंड अप करके तुहाडे सारे तो इजाजत लैनी आ और हैव अ ग्रेट वीकेंड अहैड, हैव अ हैप्पी फ्राइडे। फिर किसी होर दिन जल्दी ही मिलने की आस ते उम्मीद दे नाल मैनू यानी कि पूजा टोहानी दे इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड डे अहेड एंड हैप्पी डे, हैप्पी फ्राइडे टू यू, लव यू ऑल। अगला सफर रणदीप जी दे नाल। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून ओनली ऑन एफएम रेनबो।

आकाशवाणी FM रेनबो 102.7 MHz ते जी तुहाडा सब दा निगा जे स्वागत है निगा जे इस करके क्योंकि जी किते किते नहीं हर जगह मैनू लगता है कि रात शामी जड़ी मीह हनेरी ते थोड़ी जी बरसात किते किते गड़े पए ने उहदे करके ठंडा जिहा मौसम तो हो गया इस करके निगा स्वागत सब नू प्यार भरी सत श्री अकाल वेलकम जी जियां नू ते जी तुहाडी प्यारी RJ दोस्त रणदीप कौर है तुहाडे नाल पूरे 10 बजे तो 2 बजे तक वक्री वक्री प्रोग्राम्स ते वक्री वक्री प्रोग्राम्स दे विच वक्रियां वक्रियां होणगियां गल्लां तुसी कितरे नहीं जाणा क्योंकि जिद्दां तुसी सवेर तो लैके हुण तक इंजॉय कीता है इसी तरह 2 बजे तक मेरे नाल तुसी फन शन करना है क्योंकि जी प्रोग्राम गीत बाहर होएगा 1 घंटा ते उस तो बाद फोन इन फरमाइशी प्रोग्राम जिहड़ा कि तुहाडा सब दा पसंदीदा वाला शो है हाँ ना जी जिहदे विच तुसी नंबर डायल करना है ते उस तो बाद होम स्वीट होम ते उस तो बाद आखिर दे विच होएगा जी मेडे मैलडिज मतलब पंजाबी हिंदी ते उन्हां पुराणियां गीतां दी बहार पूरे 4 घंटे आपां कहना जी पूरे दा पूरा इंजॉय सो जी 102.7 MHz ते प्रोग्राम गीत बहार दी शुरुआत दे विच अलका याग्निक एंड अभिजीत भट्टाचार्य दी आवाज़ दे विच ए गीत तुहाडे रेडियो सैट्स ते

जी दोस्तों, सुनो ना, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ के तुम्हें ट्रैक इंजॉय किया जी 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से। उस तो पहले मैं गल कर रही थी तुहाडे नाल जसपिंदर नरूला की बेबाक आवाज़ दी मलिका, सुरां दी मलिका, तो बहुत सारे सुपर डुपर हिट गीत इन्होंने अपनी झोली पाए ने ते बॉलीवुड इंडस्ट्री नूं दित्ते ने। बॉलीवुड दे नाल नाल बॉलीवुड इंडस्ट्री दे विच इन्हां दे बहुत ही फेमस गीत ने। पंजाबी फोक एंड क्लासिकल म्यूजिक दी बहुत सोहनी जिहड़ी है इन्हां दी आवाज़ दे विच मिलाप हुंदा है। 90 दे दहाके तों लै के हुण तक इन्हां ने बहुत सारियां फिल्मां दे विच अपने गीत जिहड़े ने ओह गुनगुनाए ने। प्यार तो होना ही था, तारे हैं बाराती हैं, बूम ब्रो, जुगनी जुगनी, तो इन्हां गीतां दे नाल नाल इन्हां नूं सिंगर्स दा अवार्ड यानी कि म्यूजिक डायरैक्टर दे नाल काम करन दा मौका भी मिलिया। मतलब बहुत वड्डे वड्डे जिहड़े सिंगर्स ते डायरैक्टर ने म्यूजिक दे, उन्हां दे नाल काम करन दा मौका मिलिया, जिन्हां दे विच्चों अनु मलिक, सोनू निगम एंड सब तो वड्डी गल A.R. रहमान उन्हां दे नाल इन्हां नूं काम करन दा मौका मिलिया। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री विच भी उन्होंने अपनी वक्री पहचान बनाई है। वाकई जी जदों बॉलीवुड पॉलीवुड दी फीमेल सिंगर्स दी आर्टिस्ट दी गल आउंदी है तां जसपिंदर नरूला दा नाम उस लिस्ट दे विच सब तो उपर हुंदा है।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जी दोस्तों, छोटा जी कमर्शियल ब्रेक ऑन दिस इन स्पोर्ट्स, तो बाद प्रोग्राम गीत बहार।

जी दोस्तों, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ के किन्ने सोहने और सुपर डुपर हिट गीत जड़े उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री नूं दित्ते ने, और उन्हां अदाकार उन्हां एक्ट्रेस दी बिल्कुल आवाज़ दे नाल मेल खांदी है आवाज़ है। और पहले समय दे विच बिल्कुल इहो ही हुंदा सीगा कि जिहड़े एक्टर सीगे उन्हां दी आवाज़ दे नाल मेल खांदी प्लेबैक सिंगर चूज़ कीते जांदे सी, जिद्दां कि शाहरुख खान दी आवाज़ जिहड़ी है सोनू निगम जी हुणां दे नाल बिल्कुल मैच करदी सी। ते सोनू निगम ने बहुत सारे गीत जिहड़े ने ओह शाहरुख खान दे लई गाए ने, और इदां ही लता जी ते इदां ही सोनू निगम एंड नाल दी नाल अलका याग्निक, मतलब हर एक हीरो दा एक फेवरेट वाला, जिदा साडे फेवरेट एक्टर ने सिंगरस ने इदा ही उन्होंने प्लेबैक सिंगरस होंगे सी, जिहड़े बिल्कुल हू बहू उन्हां दी आवाज़ दे विच गुनगुनाया करते सन। जी जी जी जी, अज वाकई ना अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ दे विच जिन्ने सारे गीत ने नाल दी नाल जसपिंदर नरूला जी, सोनू निगम ते विच विच किते ना किते अलका याग्निक भी अपनी आवाज़ जिहड़ी है ओ इन सुरां दे विच जरूर बखेर रही है। एक सौ 2.7 मेगाहर्ट्ज़ से प्रोग्राम चल रहा है जी गीत बहार।

हम तो दीवाने हुए यार। ये गीत जड़ा है जी बादशाह फिल्म दे विचों लिया गया है। शाहरुख खान ते ट्विंकल खन्ना ने इहदे विच अदाकारी कीती है। अभिजीत और अलका याग्निक ने गीत गाया है। म्यूजिक डायरेक्ट किया है जी अनु मलिक एंड लिरिक्स इस गीत दे विच दित्ते ने समीर जी ने। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से प्रोग्राम गीत बहार दा समा जिहड़ा ना वह भजदा जा रहा है ते आप भजदे समय नूं कदी भी रोक नहीं सकते। पर तुसी किधरे नहीं जाना क्योंकि इस प्रोग्राम तो बाद अगला प्रोग्राम तुहाडा सब दा फेवरेट शो होएगा। ते जी उहदे वास्ते तुहानूं थोड़ा जिहा करना पएगा इंतजार। इस प्रोग्राम यानी कि गीत बहार दा आखिर वाला गीत तुसी इंजॉय करोगे मेरे नाल यानी कि अपनी प्यारी आरजे दोस्त रणदीप दे नाल। ते उस तो बाद अगला प्रोग्राम जल्द लैके हाजिर होनी आ।

0: वेल दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। प्रोग्राम पंजाबी तड़का 0181 3044 नंबर डायल करके तुसी मेरे नाल गलबात कर सकते हो ते दस सकते हो कि तुसी लागे बन्ने नेड़े किधरे जाना होवे ते बाइक या गड्डी काट दियो या फिर अपना मूड जिहा बना के इदां ही पैदल तुर जांदे हो। पहले कॉलर जिहड़े ने पहुँच चुके ने, गल करदे हां उन्हां दे नाल। हैलो
1: हैलो मैडम जी, सत श्रीकाल जी।
0: सत श्रीकाल जी।
1: मैडम जी, सनी भगत बोल रहे हैं जी, भार कैंप जलंधर से।
0: हाँ जी सनी जी, की हाल चाल ने?
1: बहुत वधिया मैडम, तुसी सुनाओ अपने जी।
0: मैं बिल्कुल ठीक हाँ जी। प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है तो पूरा एक घंटा मतलब वन सवनिया कॉल जड़िया आनिया ने।
1: वो बह के मैडम जी हम प्रोग्राम पूरा सुनांगे जी। जो तुसी मैडम जी आंदे फिर मैं कॉल जरूर मानना, नहीं तो मैं बहुत घट वध मिलाई जाए।
0: ओके मान लैने, पर मैनू लगता है कि तारीफ वाले जो शब्द ने हर किसी लिए वरते जाते हैं।
1: नहीं नहीं मैडम जी, सही गल है जी, झूठ नहीं मारते आप।
0: ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। खैर जी, प्रोग्राम दे विच आपां गलबात करनी है जी, जे जिदा कि हुण पेट्रोल की कीमत भी वध चुकी है, डीजल दे नाल दी नाल गैस सिलेंडर जिहड़े पहले ही जिन्हां दी कीमत वध चुकी सी, की कोशिश करनी चाहीदी है? तुसीं कोशिश कर चुके हो कि लागे बन्ने किधरे जाणा होवे तुसीं बाइक या गड्डी नहीं काढ़दे?
1: मैडम जी, जो तेल अपने महंगा नहीं होया उस तो पहले मैं तुहानूं गल सुणाना। मेरे को स्कूटरी भी हैगी, साइकिल भी हैगी।
0: ओके,
1: तो जो कि लागे जाके जाना होता फिर मैडम जी साइकिल चल जाएगा जी।
0: पक्का?
1: पक्का जी, जे कि दूर जाना हो फिर बाइक ही कड़ी दी, नहीं तो नहीं। वह भी अपना हफ्ते बाद ही कड़ता मैडम।
0: किन्नी क लागे जाना हो तो साइकिल से चले जाते हो?
1: जिदा मैडम जी ला लो बस स्टैंड हो गया, जिदा अपने घर तो किलो दो तीन किलोमीटर इदा जी।
0: फिर मतलब तुम कई बार होंगे ना कि सू संघ जी आँगी, शर्म जी आँगी कि लैदस लागे गड्डिया लंघी जाएँ, तो सनी बेचारा मतलब कि कोई सोचे देखे तो बई मैं तो नहीं जाता साइकिल से।
1: नहीं मैडम जी, अच्छा कोई शर्म की गल नहीं, जो बाइक नहीं हैगी तो मैडम जी उसे लोग साइकिलों ही आते।
0: बिल्कुल
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम
0: जी, बहुत वधिया गल की है तुसी कि वाकई लागे बन्ने जे किधरे जाना है तो उहदे संग मनणी भी नहीं चाहिए क्योंकि साडी उहदे नाल सेहत भी सही रहिंदी है ते सानू जे सोचिया जावे ते ना ते ताज़ी ताज़ी हवा भी मिलती है।
1: ताज़ी ताज़ी हवा भी मिलती है।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

कानूनी सेवावां अथॉरिटी एक्ट 1980 दी धारा 12 दे तहत योग नागरिक मुफ्त कानूनी मदद न्याबंधु मोबाइल ऐप ते www.probono-doj.in तों प्राप्त कर सकते हैं।

0: गांव वालों बसंती को समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालों अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। कसम सुनते रहिए 102.7 एफएम रेनबो।
1: ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है, 102.7 एफएम रेनबो की प्रोग्राम की शुरुआत करन जा रही है मैं, यानी थोड़ी प्यारी आरजे दोस्त रणदीप कौर। ते प्रोग्राम दा नाम है जी होम स्वीट होम। जी हाँ जी हाँ, तुहाडे इंतजार दीआं घड़ियां जिहड़ियां खत्म हो जाणियां ने, क्योंकि जी बहुत सारी जानकारी इनफॉर्मेशन ते

हाँ जी दोस्तों, तुसी डाइटिंग इदां दी नहीं करनी कि 2 दिन चंगी सैर कर ली ते चंगी एक्सरसाइज कर ली ते उस तो बाद समोसे ते स्नैक्स दियां प्लेटां भर भर के खा लिया ते फिर तुहानूं लगा कि नहीं बई मैं तो पतला हो नहीं रहा। 1-2 दिन नाल कुछ नहीं जे होना, बड़ा टाइम लगता है ते दिल नूं ते नाल दी नाल दिमाग नूं भी समझाउणा पैंदा है कि पेट दे विच उन्नियां कि चीज़ां जाण जिन्नी कि सानूं भुख लगती है, जिन्नी कि सानूं लोड़ है। खैर जी, पंपकिन सीड्स वाल वधदियां, यानी कि कद्दू दे बीज। वैसे हैरानी वाली गल है ना कि पहले सानू पता हुंदा कि वाकई कद्दू दे बीज किन्ने फायदेमंद ने, है ना। तो असी फिर जिहड़े कद्दू सब्जी बनाने या फिर हलवा बनाने उहदे बीज जदों पक्के हुंदे ने तां आपां विचों कढ के सिट ही दिंदे आ, लो जी ते असीं हुण इह चीज़ां बाज़ारों किन्नियां महंगियां महंगियां लै के आउंदे ने पर सानू स्वाद लगदियां ने। कद्दू दे बीज जिहड़े हुंदे ने ना, जिंक, मैगनीशियम अते आयरन नाल भरपूर हुंदे ने। इह साडी इम्यूनिटी नूं स्ट्रोंग

जी दोस्तों, FM बैंड 102.7 MHz से प्रोग्राम चल रहा है जी, गीत बहार। गीत बहार नहीं, हाय हाय, तुसी भी सोचने लग गए कि भई गीत बहार क्यों चलन लग पे। हाँ जी, मैं तुहाडा ना ध्यान जिहड़ा ना इधर खिंचना चाहुंदी सी, क्योंकि तुसी घर दे कम्मां दे नाल नाल कितना भुल जाने हो। मतलब गाना इंजॉय करदे करदे तुसी जो नोट करना हुंदे ना, वह तुहानू चेता भुल जाता। हाँ जी, प्रोग्राम गीत बहार नहीं, होम स्वीट होम है। जी, जिते खाण पीन वालिया गल्लां आपां कर रहे सी, मतलब सीड्स दे बारे, बीजां दे बारे मैं गल कीती, उत्थे क्यों ना हुण पीन वाली किसी चीज़ की गलबात होवे। क्योंकि जी गर्मी हालांकि अपने पीक ते नहीं है, पर फिर भी एक चीज़ जिहड़ी है ना, बचपन दे विच सारे खांदे सी। हालांकि वड्डे होके कई बार असीं उह चीज़ां भुल जांदे, क्योंकि साडे कोल ना खाण वाली वरायटी बड़ी हुंदी है, मतलब पीन वाली चीज़ों की भी बहुत सारी वरायटी होंगी है। लेकिन ये गल, ये शब्द जिहदा नाम है जी गोंद कतीरा। हाँ जी, गर्मियों के ना बड़ी स्वाद लगती है गोंद कतीरा। हर किसी ने पीती हुई है दुध दे विच पा के, कई तो इन पानी दे विच भी ना नींबू निचोड़ के पी जाते हैं, गटाक देनी, क्योंकि स्वाद लगती है। बड़ी स्वाद होंगी भी है गोंद कतीरा। ना एक कुदरती गोंद है जो कि कुछ खास दरख्तों तो प्राप्त होंगी है। गर्मी के मौसम में इसका वरतों खास तौर पर किया जाता है, इसकी वरतों, क्योंकि जी ये शरीर में जड़ी ना ठंडक पहुँचाती है। इसनों रात भर पानी में डिप करके रखने के नाल, भिओ के रखने के नाल, ये ना कुछ घंटिया बाद ना हौली हौली ना एक जैली वर्गा पदार्थ जहा बन जाता, जे तुसी देखा हो। हाँ जी बिल्कुल जी, उन्होंने ही कहें गोंद कतीरा। जो भर गर्मी होंगी ना, तो असी सफ़र करते हुए फिर सानू ना रस्ते दे विच एहो जिहियां कुछ रेहड़ियां जां कोई एहो जिहियां शॉप्स दिखाई दिंदियां ने जिथे एहो जिहियां चीज़ां मिलदियां ने, तो फिर साडा बदो बदी मन करता है कि वाकई भी हुण ठंडा पानी, नींबू पानी या शकैश कंजवी या फिर गोंद कतीरा मिल जाए ना, तो वाकई साडे ठंड पै जाए। हाँ जी बिल्कुल जी, इस तरह तुहानू तुहाडी रूह नू ठंडक देने लई गोंद कतीरा दे मैं फायदे दसन जा रही हाँ। शरीर नू ठंडक तो दिंदा ही है, गर्मी अते लू तो बचाउण लई गोंद कतीरा बहुत ही लाभदायक मन्या जांदा है। ये शरीर दा ना तापमान जिहड़ा बैलेंसड करके रखदा है, एंड जी पेट लई भी फायदेमंद है। इहदे नाल कबज़, एसिडिटी अते पेट दी गर्मी जिहड़ी ना उह घट जांदी है। मतलब काफ़ी चीज़ां नू इह बैलेंस करके रखदा है। पानी विच भिगो के जदों गोंद कतीरा रखदे हां ते उहदा

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

सेवावां अथॉरिटी एक्ट 1987 दी धारा 12 दे तहत योग नागरिक मुफ्त कानूनी मदद न्याबंधु मोबाइल ऐप ते www.probono-doj.in तों प्राप्त कर सकते हैं।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस

छोटा जिहा कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक तो बाद फिर तो हाजिर है जी प्रोग्राम होम स्वीट होम दे विच। स्टूडियो की घड़ी ती 12:57 ते 25 सैकेंड हो चुके ने। जिहड़े सीड्स की मैं गल की ते नाल दी नाल गोंद कतीरा की गल की है ये जरूर तुसी ट्राई करना क्योंकि गर्मी आ गई है। पर उहदे नाल नाल एक खास ध्यान देने वाली गल है कि जेकर तुहानू ये खाण दे नाल तुहानू साह दी कोई प्रॉब्लम आउंदी है, खाण तों बाद तुहानू अलर्जी हुंदी है या किसी भी तरह की तुहानू दिक्कत आउंदी है ते तुसी इहनू जिहड़ा इस तों बाद तुसी अपने डॉक्टर नाल जरूर सलाह करनी है। कई बार कुछ चीज़ां सानू सूट नहीं करदियां या साडी स्किन नू सूट नहीं करदियां या साडी हैल्थ वास्ते वो एकदम सानू अलर्जी हो जाती है। सारिया नू नहीं मतलब कई बार कुछ सिम्टम्स अचानक इदां दे हो जाते हैं, उहदे वास्ते घबराउणा नहीं हैगा, तुसी अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लैनी है। पर इदां दीआं चीज़ां जिहड़ियां ने साडी हैल्थ वास्ते बहुत ही बैनीफिशियल हुंदियां ने, बैनीफिट्स हुंदे ने, इह तुसी जरूर ट्राई करिया करो क्योंकि अपनी जिंदगी दे विच जिद्दां असीं नवीं नवीं चीज़ां लैके आउंदे ना जंक फूड ते होर बहुत सारी वरायटी, पर इह साडियां पुरानियां वह रॉ रीतां दे नाल जुड़ियां हुई चीज़ां ने जिहड़ियां कि सानू साडी हैल्थ नू भी इंप्रूव करदियां ने और साडी बॉडी दे नाल नाल साडे दिमाग नू भी तरोताज़ा रखदियां ने। प्रोग्राम होम स्वीट होम दे विच अज लई इन्ना ही ते जी एक वजन वाला है ते इस दे नाल ही इह प्रोग्राम दी आपां समाप्ति करदे हां एमी विर्क एंड मन्नत नूर दी सोहणी आवाज़ दे विच। आखिर दे विच एक ट्रैक तुसीं इंजॉय करोगे ते उस तों बाद 1 बजे होएगा जी प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़।

0: आओ बालो बसंती को समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालों अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। मां कसम सुनते रहिए 102.7 FM Rainbow।
1: जी दोस्तों, ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से। एक बार फिर तो थोड़ा स्वागत है जी, वेलकम बैक। तो 1:02 हो चुके हैं, तो प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़ तुसी मेरे नाल इंजॉय करोगे, यानी कि तुहाडी प्यारी दोस्त रणदीप कौर दे नाल पूरे 2 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। नाल दी नाल कम किते ते नाल दी नाल होएगी जी ये आवाज़, ये अंदाज़ ते ये बहार गीतां दी, लता मंगेशकर दी एंड शबीर कुमार दी आवाज़ दे विच गीत है जी 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।

जी दोस्तों, FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से नाल 103.6 मेगाहर्ट्ज़ यानी कि साढ़े अमृतसर के श्रोता भी 1 बजे तो साढ़े नाल जुड़ चुके हैं और वह भी प्रोग्राम का आनंद माण रहे हैं जिहदा नाम है जी मिड डे मेलोडीज़। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आँखों से कितना देखा जा सकता था। सच्ची जी, वाकई जी, अल्फाज भावें कभी कभी सौखे जे होण, सिंपल जे होण, पर उहदे मायने जिहड़े ना बहुत वड्डे हुंदे ने। बस समझण वाली चाहत ते दिल चाहीदा है।

जी बिल्कुल सच ही कहा है किसी ने, जी हाँ सच ही कहा है किसी ने। रोज एक ताज़ा शेर कहाँ तक लिखूं तेरे लिए, रोज़ एक ताज़ा शेर कहाँ तक लिखूं तेरे लिए, तुझ में तो रोज़ ही ऐ दोस्त ऐ हमसफ़र, तुझ में तो रोज़ ही एक नई बात हुआ करती है, एक नई बात हुआ करती है।

एक लाइन में क्या तेरी तारीफ करूं, मैं एक लाइन में क्या तेरी तारीफ लिखूं, पानी भी जो देखे तुझे, पानी भी जो देखे तुझे प्यासा हो जाए।

जी दिल बिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे 103.6 MHz दे यानी कि साढ़े आकाशवाणी अमृतसर दे श्रोता भी इस प्रोग्राम नू इंजॉय कर रहे ने जिहदा नाम है मिड डे मेलोडीज यानी कि तुसी भी इंजॉय कर रहे 102.7 MHz से ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है FM बैंड 102.7 प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज ओ सुहाने सफर दी याद पूरा एक घंटा तुहानू लै चलदी है और इस तरह के गीत जड़े होंदे ने तुसीं कितें लोंग ड्राइव ते जाओ ते मतलब सोहणियां जिहियां वादियां हसीन वादियां और ठंडा ठंडा मौसम होवे ते बेहतरीन गीतां दा जड़ा एक सुमेल हैगा वह है जी मुहम्मद रफ़ी एंड लता मंगेशकर दियां आवाज़ां दे विच

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

FM-Band 102.7 MHz आकाशवाणी जालंधर, 103.6 MHz आकाशवाणी अमृतसर, न्यूज ऑन AIR दे जरिए दोस्त इस वेले प्रोग्राम सुन रहे ने जी, जिसका नाम है दिल आज शायर है। इस प्रोग्राम दे विच अगली शायरी साढ़े तक पहुंचती कर रहे ने जी, साढ़े दोस्त किरण अरोला जी ग्रीन पार्क कपूरथला तो प्यार भरी गुड आफ्टरनून दे नाल लिख रहे ने कि नखरे भी तेरे सोने अदा विच प्यार है, नखरे भी तेरे सोने अदा विच बड़ा प्यार है, तेरे इंतजार दा सजना दिल नू हर पल खुमार है, मोहब्बत तेरी रब वर्गी रूह तक असर कर गई, तेरा नाम लेंदे ही जाना धड़कन भी शायर बन गई। बहुत बहुत शुक्रिया जी इन्ना प्यार देने वास्ते इस प्रोग्राम दे विच, थैंक यू सो मच किरण जी अपनी शायरी साढ़े नाल सांझी करन लई। अगली शायरी साढ़े नाल सांझी कर रहे हैं जी प्यार भरी सत श्री अकाल अर्ज कर रहे हैं बलविंदर सरा पिंड मोड़जंड सिखा हनुमानगढ़ तो लिख रहे हैं कि दर्द हर किसी का होता है, पर दिल में जो दर्द होता है उसका एहसास कुछ अलग ही होता है। बिल्कुल जी, दिल दे दर्दां दा, दिल दे विच जो दर्द है जी उसके जो हालात ने असी तुहानू सुना चुके ऑलरेडी मास्टर सलीम की आवाज़ के विच, कि दिल दे जो दर्द ने जदों

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: अगर बचपन सुरक्षित है तो भविष्य सुरक्षित है, और अगर परिवार मजबूत है तो समाज मजबूत है। एक बच्चे का पहला स्कूल उसका परिवार होता है, जहां वह सिर्फ बोलना नहीं जीना सीखता है। परिवार वह छत है जहां बचपन सपने देखते हैं, और वही नींव है जहां भविष्य खड़ा होता है। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं शिल्पा गुप्ता और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हर साल 15 मई को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाती है। इस दिन का उद्देश्य परिवारों की भूमिका और समाज में उनके महत्व को समझना है। इस वर्ष की थीम है फैमिलीज इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग, यानी परिवारों के भीतर और समाज में मौजूद असमानताओं के बीच बच्चों का शारीरिक और मानसिक कल्याण। बच्चों का स्वास्थ्य विकास अच्छे भोजन और शिक्षा के साथ साथ एक सुरक्षित सहयोगी और भावनात्मक रूप से मजबूत पारिवारिक माहौल से भी जुड़ा होता है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दो विशेष विशेषज्ञ मौजूद हैं। डॉक्टर MS तोमर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: थैंक यू।
1: और साथ हैं KR चटर्जी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में।
3: नमस्कार, थैंक यू।
1: श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है, जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। हमारा फोन नंबर है 2342-1080, 2342-1082। अगर आप

0: दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो 01 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। आज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे परिवारों में मौजूद असमानताएं बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। तो डॉक्टर MS तोमर जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों के विकास के लिए फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है।
1: देखिए, परिवार का बहुत ज़्यादा रोल होता है बच्चे के विकास में। सबसे पहले देखिए, परिवार का जो कंसेप्ट है बहुत पुराना है, बड़ा क्लियर कट डिफाइन किया गया है हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में, कि स्नेह संरक्षण उत्तरदायित्व एवं संस्कार है संयुक्त समूह परिवार है। अर्थात प्रेम, सुरक्षा, जिम्मेदारी और संस्कार से जुड़े लोगों का समूह ही परिवार है। तो जब भी हम परिवार की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि उस परिवार में ये सारी चीज़ें है या नहीं है। जैसे प्रेम है, सुरक्षा है, एक दूसरे को सिक्योरिटी फील होना चाहिए, ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग सिस्टम वो हमें क्रिएट करना है। जिम्मेदारी, हर किसी की एक जिम्मेदारी तय होना चाहिए, उस जिम्मेदारी का या रिस्पॉन्सिबिलिटी का लोग कितना निर्वहन कर रहे हैं। और संस्कार, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि बच्चों में जो हम संस्कार देते हैं, वही जो हम बिहेव करते हैं, वही संस्कार बच्चों में जाते हैं। तो जितना फैमिली का अच्छा ये सारे पॉइंट्स हैं, उतना ही बच्चा के विकास पे असर पड़ता है परिवार का।
0: किया जी, आपसे जानेंगे कि बच्चों का मानसिक विकास कैसे करें।
2: जी देखिए, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उनको अपने माँ से एक जुड़ाव होता है और वो अपने माँ के साथ रहता है, तो जब पढ़ता रहता है तो प्यार पनपता है। सो जैसे आज आपका टॉपिक है लव, सो उसमें भी बच्चा अच्छी तरह ही पनप जाता है। और जैसे जैसे बड़ा होता है, माँ को या पापा को उनको जादू की झप्पी दे के या उनके साथ बैठ के उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके उनको पास रखना होता है। जितना पास रखेंगे, जो फिज़िकल टच होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, मानसिक एज वेल एज इमोशनल। अब हम आते हैं डॉक्टर गैरी चैपमैन, जो जिन्होंने रिसर्च किया और एक बुक भी पब्लिश किया, 5 Love Languages ऑफ किड्स। उसमें क्या होता है, उन्होंने डिफाइन किया कि 5 Love Languages, जैसे कि ना कुछ बच्चों को गिफ्ट मिलना बहुत पसंद है, वो फर्स्ट हो गया उसका लव लैंग्वेज। फिर किसी को तारीफ करना पसंद है तो वो हो गया सेकेंड लव लैंग्वेज। फिर हो गया फिजिकल क्लोजनेस। फिर हो गया है कम्युनिकेशन, कैसे हम बातचीत करते हैं बच्चों के साथ। फिर हो गया है ख्याल रखना। तो ये 5 चीज़ें हो गए। तो जिस बच्चे का माँ को पता लग जाता है कि उस बच्चे का कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी है, कौन सा सेकंड, कौन सा फिफ्थ, उस हिसाब से बच्चों को प्यार देना चाहिए। अब वो तो बचपन की बात हो गई। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में जाने लगता है बच्चा, तो उसमें उसके पीयर्स आ जाते हैं, स्कूल फ्रेंड्स आते हैं, तो माँ को पापा को सारा टाइम एक बच्चों को एक माहौल देना है, एक उनको सेफ्टी नेट देना है कि बच्चे तुम्हारे लिए हम सदा पास में रहते हैं, तो बच्चा खुल के बात करेगा। ऐसे करते करते जब बचपन से माँ बाप का सपोर्ट रहता है, बच्चा जब बड़ा होता है तब उनका अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस के साथ आता है उनका पढ़ाई का उच्च होने का इच्छा, कॉम्पिटिटिवनेस, फिर सब कार्य में उनकी मन की इच्छा भी बड़ी होती है। फिर उनको स्पोर्ट्स में डालते हैं, फिर स्पोर्ट्स से माइंड खेलता है। तो ऐसे करके मेंटल विकास बहुत ही अच्छी तरह से होता है,
0: मतलब मेंटल सिक्योरिटी मेंटली स्ट्रांग करती है बच्चों को। एग्जैक्टली,
2: तो वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना नींव,
0: जी
2: तो नींव से ही स्टार्ट करना होता है।
0: जी एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो
3: हेलो
0: हेलो, नमस्कार जी, आपका नाम?
3: नमस्कार जी, मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ पंचकुला से।
0: जी बताइए, स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में।
3: पहले इस सबसे बेहतरीन परिवार को मैं बधाई देती हूँ।
0: जी धन्यवाद,
2: थैंक यू।
0: रेडियो डॉक्टर आपका परिवार है और आप भी इस रेडियो डॉक्टर का हिस्सा हैं।
3: मैं हिस्सा हूँ, पर मेरा सबसे प्यारा परिवार यही है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: एक तो मैं रेडियो फ्रीक हूँ, रेडियो में बहुत पार्टिसिपेट करती हूँ, टीवी मेरे को अच्छा नहीं लगता, पर आपका प्रोग्राम मैं एक महीना कनाडा गई थी, बहुत मिस किया। तो इसलिए आप सबको बहुत बधाई।
0: आपने मिस करा, अगर आप लोगों का कॉल नहीं आता तो शायद हम भी आप लोगों को मिस करते हैं। आप हमसे जुड़े रहते हैं, यही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए प्रोग्राम में हर बार एक नया टॉपिक लेकर आए। तो बताइए मिसेज बेदी, क्या प्रश्न है आपका?
3: मेरा प्रश्न सबसे पहले तो ये जो

0: उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया ना, पांच प्यार के स्टेप्स बच्चों के लिए।
1: हाँ जी
0: बच्चों की ग्रोथ आजकल इसलिए रुक रही है कि एक तो पेरेंट्स की आपस में ज्यादा अच्छे से नहीं रहते, क्योंकि
1: सही में
0: जॉब
1: बिल्कुल
0: में काफी डिफिकल्टीज आती हैं। अगर पेरेंट्स ही झगड़ेंगे तो बच्चे की ग्रोथ बहुत खराब हो जाएगी।
1: जी बिल्कुल
0: दूसरा, फैमिली में अब ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहते, सबसे बड़ी ये कमी आ गई है कि बच्चों की ग्रोथ बढ़िया ही नहीं
2: बहुत
0: है।
2: अच्छा
0: उनकी
2: पूछा आपने मैडम।
0: गाइडेंस,
2: क्वेश्चन करें तो शायद ज्यादा
0: हाँ,
2: लोग
0: बस क्वेश्चन मैं आपको यही कर रही हूँ कि क्वेश्चन नहीं है मेरी आपसे, बस यही
2: जी
0: रिक्वेस्ट है कि आपका मैसेज दुनिया जाने
2: जी
0: और आपका मैसेज दूर दूर तक पहुंचे कि फैमिली बहुत जरूरी है। न्यूक्लियर फैमिली कोई फैमिली नहीं है।
1: जी हाँ,
0: तो
1: आज इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं
0: हाँ,
1: कि
0: तो मैं आप
1: फैमिली लोगों
0: सबका,
1: कितनी इम्पोर्टेंट है और फैमिली में रहकर बच्चों का विकास कितना ज़्यादा ज़रूरी है।
0: हाँ जी, तो मैं, मेरा क्वेश्चन कोई नहीं है, पर मैं थैंकफुल हूँ आपकी कि
2: थैंक यू
0: इतना बढ़िया आप लोगों का कंसेप्ट है जो आज का है,
1: जी,
0: और
1: हम भी
0: आपका,
1: आपके
0: थैंक यू।
1: लिए बहुत थैंकफुल। आप हमारे साथ, आपने कॉल किया, हमारे साथ जुड़े
0: हाँ
1: रेडियो डॉक्टर में।

0: फैमिली कोई फैमिली नहीं है।
1: जी हाँ, आज इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं
0: हाँ
1: कि
0: तो मैं
1: फैमिली
0: आपका
1: लोगों
0: मतलब,
1: कितनी इम्पोर्टेंट है और फैमिली में रहकर बच्चों का विकास कितना ज़्यादा ज़रूरी है।
0: हाँ जी, तो मैं, मेरा क्वेश्चन कोई नहीं है, पर मैं थैंकफुल हूँ आपकी कि
2: थैंक यू,
0: इतना बढ़िया आप लोगों का कंसेप्ट है जो आज का है,
1: जी
0: और
1: हम भी आपके
2: थैंक
1: लिए
2: यू।
1: बहुत थैंकफुल, आप हमारे साथ, आपने कॉल किया, हमारे साथ जुड़े
0: हाँ
1: रेडियो डॉक्टर में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तोमर, जैसे कि अभी केयर जी ने कहा कि मानसिक विकास बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, ऐसे में अगर हम बात करें शारीरिक विकास के लिए, तो बच्चों का शारीरिक विकास कैसे करें कि बचपन से ही उनकी ग्रोथ सही हो?
2: देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि बच्चे का जो विकास है, बच्चे की पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, कैसा बनेगा, वो उसके पैदा होने के 100 साल पहले से शुरू हो जाता है। तो पूरी फैमिली को इस पे ध्यान देना है। हम लोग बच्चा पैदा होने के बाद सोचते हैं कि वो हेल्दी है या नहीं। कई बार तो छः महीने पर बच्चा हो जाता है, उसके बाद आते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए मेरा बच्चा स्वस्थ है या नहीं है। बल्कि जब से बच्चा पेट में आता है, कंसेप्शन से, राइट फ्रॉम द कंसेप्शन से आपको उसकी हेल्थ के बारे में सोचना है। क्योंकि आपका जो, हमारी लैंग्वेज, मेडिकल लैंग्वेज में एक गोल्डन 1000 डेज कहते हैं हम इसको, 1000 दिन जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट फ्रॉम द कंसेप्शन टू टिल 2 ईयर्स ऑफ एज। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि मदर का आपको पूरा ख्याल रखना है, इमोशनल सपोर्ट देना है, उसकी डाइट को अच्छा रखना है। क्योंकि आधे से ज़्यादा विकास बच्चे का पेट के अंदर ही हो जाता है, जो बच्चे के अंग बनते हैं, बच्चे का मानसिक विकास होता है, उसी को आपको कैरी ऑन करना है।
3: इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे कि आपने बोला ना, तो ये बच्चों का घर में एक माहौल अच्छा सा होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बच्चे ना अपने पेरेंट्स से अब्सॉर्ब कर लेते हैं उनकी परेशानियाँ, जैसे कि आर्थिक परेशानियाँ हुए या नॉर्मल कोई भी ऑफिस रिलेटेड हुआ या मानसिक परेशानी, तो बच्चे वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं और उनके बिहेवियर में आता है, जैसे वो झल्लाहट करते हैं या टीनेज टैंट्रम्स करते हैं, कुछ
2: बिल्कुल,
3: भी
2: बिल्कुल
3: पिटफुल। तो उस वजह से बच्चों को देखना होगा कि भाई माहौल अच्छा है तो ही वो अच्छी तरह कर पाएंगे।
2: बिल्कुल,
1: माहौल से हम भी इस माहौल को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत
2: जी।

0: खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा। घर घर तभी लगता है जब परिवार में सभी सदस्य हों, सभी आपस में मिलजुल कर रहें। जैसे कि कॉलर ने पहले हमसे लाइन पे कहा था कि आजकल माता पिता वर्किंग है, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो ऐसे में बच्चों के वेलबींग के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, तो माता पिता को क्या करना चाहिए जिससे उनकी शारीरिक ग्रोथ सही हो, वो हेल्दी हो? क्योंकि अक्सर हम कह देते हैं हेल्दी है, लेकिन बच्चे इतने हेल्दी नहीं होते, तो क्या किया जाए?
1: देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा हेल्दी की डेफिनेशन क्या होती है, हेल्दी होता क्या है बेसिकली। तो अगर आप WHO की डेफिनेशन को देखें तो इसका फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज हेल्थ। तो कोई बच्चे का वेट अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी हो गया। उसको इमोशनली कितना स्ट्रांग है बच्चा, सोशली वेलबींग है कि नहीं उसकी, तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। दूसरा, अभी जो हमारे कॉलर ने एक क्वेश्चन उठाया था कि पेरेंट्स घर में झगड़ते हैं या कुछ करते हैं, तो हमेशा याद रखिए, हम जो पेरेंट्स को समझाते हैं कि जैसे ही बच्चा आपके घर में आता है, तो मान के चलिए आपके घर में एक बहुत बड़ा कैमरा लगा हुआ है, वो आपको देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, एग्जैक्टली आप कैसे दूसरों के साथ बिहेव कर रहे हैं, आपका इमोशनल एक्सप्रेशन कैसा है, आपका बाकी फिजिकल एक्टिविटी आप कितनी कर रहे हैं, वो सारा आपका बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। और जाने अनजाने में है, जो ऑब्जर्वेशन से बच्चा सीखता है उसी को हम संस्कार कहते हैं। तो हमें इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत केयरफुल रखना पड़ेगा। आपको झगड़ना है वो नेचुरल, आप अकेले में भी झगड़ सकते हैं, आपको एंगर को मैनेजमेंट करना है, और जैसा आप बिहेव करेंगे वैसे ही आपका बच्चा वो करेगा। बाकी मैडम आप बताइए, कुछ ऐड कौन करना चाहें इसमें?
0: हाँ किया जी, आप बताइए कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए परिवार का क्या रोल रहना चाहिए, कितना अपनापन उनको देना चाहिए?
2: जी देखिए, बचपन से ही बच्चों के साथ रहना चाहिए, ये मैंने पहले भी बोला है, उनके साथ खेले, माँ बाप खेले उनके साथ, हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, उनको फील करवाएं कि हम तुम्हारे साथ हैं। उनको बचपन से ही के ग्रैटिट्यूड का फीलिंग दिलवाना चाहिए कि जी थैंकफुल रहे बड़ों से, या जिनसे भी तुम मिल रहा है तुम्हें थैंकफुल रहे। फिर हम आते हैं कि थोड़े जब बच्चे बड़े हो गए हैं, तब जब वो स्कूल जाते हैं, तब उनमें एक पीयर्स प्रेशर के बोल भी बोल सकते हैं या अदरवाइज ऑल्सो, उनके में उनमें एक एग्रेशन आता है, एंगर बिहेवियर आता है। उस टाइम पेरेंट्स को चाहिए कि शांति से चीज़ों को सुलझाएं। वो कैसे कराएंगे? वो पहले तो जब देखेंगे कि एटमॉस्फेयर अगर बिगड़ रहा है, तो वो बच्चों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे कि वो अपने से ही संभल जाए। उसके बाद उनको समझाएंगे, कहानियों के माध्यम से समझाएंगे कि ये उचित है ये नहीं उचित है, ऐसे करके। उसके बाद एक दैनिक दिनचर्या पर टिके रहे, ताकि एक डिसिप्लिन लाए बच्चों में, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होएगा, माइंड में एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, उससे बच्चों का विकास में भी परिवर्तन आएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: ठीक है ना। उसके बाद जो परिस्थितियों से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वो परिस्थितियाँ फिर से ना आए, ये माँ बाप को ध्यान में रखना पड़ेगा। बच्चों को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो बच्चे कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट करें, ये नहीं कि उनको धुतकारे। क्योंकि जैसे माँ बाप, जैसे आज डॉक्टर साहब ने बोला कि माँ बाप जैसे करते हैं वो बच्चे इम्बाइब कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि नॉर्मल है कि माँ बाप झगड़ रहे हैं, इस पर चर्चा विचार करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको ठीक पथ पे जाना है। इसीलिए उन बच्चों के साथ समय बिताएं, फिर उनको जब बाहर ले जाए, फिर प्रोत्साहित कीजिए कोई भी एक्टिविटीज़ में, जैसे गाना हुआ, उसमें माइंड का बहुत ही

0: असर होता है। फिर योगा हुआ, फिर मेडिटेशन हुआ, इन सब चीज़ों में जो नर्व्स होते हैं उनको सूदिंग मिलता है। फिर प्रैक्टिस करना चाहिए कि एकांत कैसे रहा जा सकता है, उसमें बहुत ही अच्छा होता है। फिर एग्ज़ाम्स में परिवर्तन आता है, ऐसे करके शुरू से ही बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट में ध्यान रखे पेरेंट्स।
1: लेकिन आजकल जहाँ सोशल मीडिया के टाइम पे बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, तो बच्चे बाहर नहीं जाना चाहते खेलने के लिए,
0: क्योंकि उनके होमवर्क्स भी तो बहुत आते हैं और सारा इंटरनेट से ही आता है।
1: जी, तो बच्चे बोलना नहीं चाहते, तो ऐसे में उनका शारीरिक विकास कैसे करें? डॉक्टर तोमर आप बताइए।
2: देखिए, आजकल के खास करके न्यूक्लियर फैमिलीज में जहाँ दोनों ही माँ बाप वर्किंग हैं, बहुत मुश्किल हो गया है टाइम को मैनेज करना। खास करके बच्चों को गुड क्वालिटी टाइम है वो नहीं मिल पा रहा है, और टाइम पेरेंट्स दे भी रहे हैं तो उसमें क्वालिटी टाइम नहीं है, एंगेजमेंट बच्चे के साथ बहुत कम हो रहा है। स्क्रीन बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन है। इधर एक क्लियर कट गाइडलाइंस कि 2 साल से पहले, 18 महीने से पहले बच्चे को स्क्रीन दिखाना ही नहीं है, लेकिन जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है वो खाना नहीं खाता।
0: हम मम्मी को लगता है यस,
2: तो उसको खाना खिलाने के लिए अक्सर मना करते हैं कि आपको बच्चे को स्क्रीन नहीं दिखाना, लेकिन मम्मी कहती है सर मैं सिर्फ खाना खाते समय दिखाती
0: हूँ। एग्जैक्टली
2: एग्जैक्टली, आपका बच्चा कोई डस्टबिन नहीं है कि आपने मोबाइल के थ्रू उसका मुंह खोला और अंदर खाना डाल दिया, वो खाना उसको हजम भी नहीं होगा, उसको कोई फायदा भी नहीं होना, वो कुछ सीख ही नहीं रहा उस खाने से, उसको टेस्ट को नहीं ले रहा बच्चा, सिर्फ मुंह में अंदर जा रहा है। तो कभी भी बच्चे को शुरुआत वहीं से होती है 5-6 महीने से कि बच्चा जब खाना नहीं खाता है, तो स्क्रीन टाइम के लिए गाइडलाइंस बड़ी फिक्स हैं। आपको 2 से 5 साल का बच्चा है मैक्सिमम आपको 1 आवर तक आपको देना है, 5 साल से ऊपर बच्चे को 1 to 2 आवर्स आप दे सकते हैं, बट उसमें भी आपको कंट्रोल रखना है स्क्रीन और डिजिटल कंट्रोल, जो पेरेंटिंग कंट्रोल है वो आपको रखना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है। सो ये बहुत ज़रूरी है। इतना सारी समस्याएं आज के टाइम में हम लोग देखते हैं, खास करके हमारे क्लिनिक्स में बच्चे बहुत टेंट्रम शो करते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो गई है, ऑटिज्म है, हाइपर एक्टिव बच्चे हो रहे हैं, जिनका न केवल स्क्रीन की वजह से बल्कि जंक फूड को भी आपको डिस्कस करेंगे बाद में, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं और पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है। तो एग्जैक्टली टाइम से आप सलाह लें कि कैसे आपको आगे बढ़ना है।
1: देखा जाए तो बचपन से हमने ही उनको आदत फोन देकर एक आदत डाल दी।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: लगता है कि बाहर जाएंगे इस अच्छे एक जगह बैठे हैं फोन देख लें। तो लेकिन इसके लिए पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है कि बच्चों को फोन ना दें?
2: बिल्कुल डिजिटल फ्री जोन आपको डिक्लेयर करना है घर में, कि जैसे आप जहाँ खाना खा रहे हैं वहाँ डिजिटल बिल्कुल अलाउड ही नहीं होना चाहिए, वो एरिया बिल्कुल डिजिटल फ्री होना चाहिए। आपका बच्चों का बेड है जहाँ पर आप सो रहे हैं वो बिल्कुल डिजिटल फ्री होना चाहिए, वहाँ अलाउड ही नहीं होना चाहिए। 1 घंटे पहले बिल्कुल आपको मोबाइल और टीवी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो रूल्स हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे, अच्छा लगता है बच्चे फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं।
1: और बच्चों का जो खाली टाइम है उस पे फ़ोन देने की बजाय बच्चों को बाहर वर्कआउट के लिए,
2: दिस इज द ओनली वे। बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या करें, ये तो मानता ही नहीं है, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होता, जितने बच्चों को आप बाहर स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट करेंगे बच्चा आपका मोबाइल छुएगा तक नहीं, प्रॉपर टाइम दीजिए स्पोर्ट्स के लिए।
0: लेकिन आजकल माँ बाप ही इतना फोन पे रहते हैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं माँ बाप जो गेमिंग में आते हैं
2: बिल्कुल,
0: और फिर बच्चे इतने छोटे होते हैं 2-3 साल से वो मोबाइल छोड़ना नहीं चाहते हैं, तब एज अ न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामर हम थेरेपी देते हैं बच्चों को, प्रॉपर थेरेपी।
1: उसमें क्या होता है थेरेपी में?
0: देखिए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज, न्यूरो इज माइंड रिलेटेड, लिंग्विस्टिक हम जो बात करते हैं अपने माइंड के साथ, और प्रोग्रामिंग हम जैसे प्रोग्राम्ड हुए हैं इतने सालों से। ठीक है, नाउ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होता है कुछ ये टूल्स है, मतलब कुछ एक्सरसाइजेस है जिसके माध्यम से हम एक पेशेंट्स को थेरेपी से ठीक करते हैं। इसमें हम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डिफरेंट टेक्निक्स हैं उससे हम रिलैक्स करवाते हैं पेशेंट को, उसके बाद एक्सरसाइजेस हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद वो बच्चा एक्सरसाइजेस थ्रू माइंड रिलेटेड एक्सरसाइजेस जो कि थीटा टाइम में होते हैं, जो सुबह का टाइम होता है, उस टाइम में प्रैक्टिस कर करके वो ठीक होते हैं। बट ये भी पेरेंट्स का ही हाथ होना चाहिए, उनका सपोर्ट, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला ना कि एक रूल बनाना चाहिए, लेकिन जनरली पेरेंट्स बनाते नहीं है क्योंकि उनके कन्वीनियंस पे चलता है सब कुछ
1: जी।
0: तो अगर वो पेरेंट्स रूल बना दे जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, तो वो एकदम बच्चा ठीक हो जाता है। तो जैसे
2: मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इसमें, हर पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि उनका रोल क्या है, उन्हें क्या करना है। एग्जैक्टली उन्हें लगता है कि अच्छी बुक्स दे देना, अच्छे उनके लिए मोबाइल या कुछ गेमिंग जो आजकल आते हैं वो दे देना, वो पेरेंटिंग नहीं है।
0: एग्जैक्टली
2: आपको ये सीखना है कि आपका रोल एज ए पेरेंट्स, माँ बाप का रोल इतना होता है कि बच्चे को अच्छी लाइफ जीना

0: कैसे सिखाना है वो आपको आना चाहिए,
1: ठीक। देखा जाए तो अगर स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों के बिहेवियर में भी काफी चेंजेस आते हैं,
0: एग्जैक्टली बहुत सारा फर्क पड़ रहा है इसका।
2: आप मानेंगे नहीं, बच्चे बचपन
0: 90% यस 90% प्रॉब्लम्स बच्चों की हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्रीन है, जो कि मैं हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। मैडम आपने भी देखा हुआ।
2: हाँ हाँ बिल्कुल, वेपिंग में आ जाते हैं बचपन से, ये ड्रग एडिक्शन में आ जाते हैं, बट एक बार अगर आ गए तो बस लाइफ तो गई।
1: तो बच्चों में एंग्जाइटी हो गई, वो शायद लोनलीनेस में चले जाते हैं, मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं, लोगों के साथ सोशल होना पसंद नहीं करते।
2: उसके लिए भी हम NLP के थ्रू उनको थेरेपी देते हैं, तब वो सुधरते हैं। अदरवाइज और देखा गया है कि ये जो इंडिया में मानसिक अवस्था है वो कुछ अच्छी नहीं है। वो 5 crore किड्स दे आर अफेक्टेड, पीड़ित है, और 80-90% जो पेशेंट्स है, मतलब प्रॉब्लम है जिनमें, वो चिकित्सा ही नहीं करवाते कुछ सोशल स्टिग्मा के वजह से, और कुछ जानने ही नहीं खुद पाते हैं कि
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और ये सारा स्टार्ट होता है यही एग्रेशन से, फिर एंगर से, डिप्रेशन, बिहेवियर डिसऑर्डर, और घर से ही तो शुरू होता है ये पहले।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये हाँ लिखते हैं राजेश कुमार चौहान जालंधर से, ये लिखते हैं नमस्कार, बच्चों को प्रेरक कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करने से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास हो सकता है, लेकिन ऐसा ना स्कूलों में हो रहा है ना घरों में, तो क्या इसके लिए कुछ काम नहीं किया जा सकता? डॉक्टर तोमर पहले आप बताएं इस पे।
0: देखिए
1: शारीरिक पूछ रहे हैं कि शारीरिक विकास हाँ कैसे करें।
0: हाँ जी हाँ जी, ये कहानी पढ़ने से शारीरिक विकास होगा ये थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आया, बट डेफिनेटली बच्चे की मेमोरी अच्छी बनती है जब कहानी सुनते हैं, एक बॉन्डिंग बढ़ती है। अक्सर जो दादी माँ की कहानियाँ हुआ करती थी वो एक मैसेज भी देती थी कहीं ना कहीं, तो वो जो हम एक हम वैल्यू सीखते हैं परिवार से, तो वो कहानी के थ्रू ही हमें सिखाया जाता था। शारीरिक विकास के लिए तो आपको बच्चे को अच्छा खाना देना है, हेल्दी डाइट देनी है, बच्चे का जो खेलने कूदने का समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, बच्चे को सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना है, और स्क्रीनिंग से आपको दूर रखना है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो स्क्रीन से हो रहा है बच्चों
1: को। स्क्रीन टाइम से बचने के लिए ही बच्चों को शायद कहानी पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि प्रेरित कैसे करें। हाँ, तो इस पे किया जी आप क्या कहेंगे?
2: जरूर, इससे जब बच्चे कहानी पढ़ेंगे या सुनेंगे भी, माइंड को जाएगा वो आवाज़, तो सूदिंग इफेक्ट होगा नर्व्स में, ब्रेन के नर्व्स में होगा, और फिर वो बातों में फिर वो सब आता जाएगा, और फिर जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, हेडेक होता है बच्चों को, स्टमक एक होता है, वो पता लगता रहता है कि बच्चा ठीक से जैसे कि ना चल, मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको, ये सब मेंटल इश्यूज स्टार्ट हो रहे हैं उससे पता लगता है। तो ये ज़रूरी है कि कहानियों के माध्यम से ही बच्चों को बहुत आराम मिलता है।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं सभी स्टूडियो में आए एक्सपर्ट और एंकर मैम को गुड आफ्टरनून।
2: थैंक यू।
1: वो लिखते हैं स्कूल में इस विषय में क्या कोई कार्य हो रहा है, इनका कोई काउंसलिंग होता है क्या, कृपया बताएं। थैंक्स नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार उत्तराखंड। तो क्या जी आप क्या कहेंगी इस पे, क्योंकि काउंसलिंग की
2: ये तो होता है। हैप्पीनेस करिकुलम तो खूब ही चल रहा है आजकल, प्रधानमंत्री का जो ये है, कुछ करिकुलम्स है हर स्कूल में चल रहा है, तो स्कूल्स में करते हैं काफ़ी लोग,
1: बच्चों की भी काउंसलिंग होती है और शायद पेरेंट्स की भी होती है कि वो बच्चों के
2: साथ का तो होता है। पीटीएम मीटिंग्स हम हर समय पहुँच जाते हैं सैटरडेज को।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं देवदत्त परसोलिया, असिस्टेंट वायरलेस ऑफिसर दिल्ली फायर सर्विस, नाइस टॉपिक, सुपर प्रोग्राम, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू देवदत्त जी,
0: थैंक यू सो मच।
1: इस पर बातें हम और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: मेरी दुनिया तू ही रे, हर माँ बाप को बच्चे को ये फील कराना ज़रूरी है कि मेरी दुनिया तू ही रे, जिससे एक परिवार में एक बॉन्डिंग दिखे। डॉक्टर तोमर, आप हमें बताइए कि बच्चे की बचपन से हर एज ग्रुप में ग्रोथ प्रॉपर हो, उसके लिए हम क्या करें, क्या क्या हमें देखना चाहिए कि बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हो रही है या कहाँ लैग कर रहा है, कैसे पहचाने?
2: देखिए, जब से बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से उसकी वेलबींग के बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसे कि हमने बताया था, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज गोल्डन 1000 डेज, जो हम पहले भी आप डिस्कस किए थे। शुरू के 9 महीने का जो गर्भावस्था का समय होता है, और उसके अलावा जो 2 साल हैं, बच्चे का

0: मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट 90% उसी एज में हो जाता है। अक्सर हमें लगता है कि 2 साल के बाद बच्चा इंटेलिजेंट बन जाएगा, उसका बुद्धिमान बन जाएगा, वो कभी नहीं हो सकता। आईक्यू लेवल जो होता है बच्चे का वो 2 साल तक ही डेवलपमेंट होता है, 90% हो जाता है या मैक्सिमम 3 ईयर्स तक हो जाता है। तो जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, उस समय उसके मेंटल डेवलपमेंट पे और उसके फिजिकल डेवलपमेंट पर, दोनों पे ही शारीरिक और मानसिक विकास पर हमें काम करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ बहुत पहले से, हजारों सालों पहले से गर्भ संस्कार जैसे एक कंसेप्ट आया था। जैसे आपने अगर सुना होगा तो जैसे अभिमन्यु था, पेट में से सीख के आया था, ऐसा नहीं था कि कोई मैजिक हुआ होगा या कुछ सीख के आया होगा। दैट वॉज ए टोटली एपिजेनेटिस, मीन्स वो कंडीशनिंग इस तरीके से किया गया कि बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ, उसका शारीरिक विकास बहुत अच्छा हुआ। तो वो आपको 9 मंथ का जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो 9 महीने आपको मदर पे फोकस करना है, मदर को खुद अपने आप पे फोकस करना है, ताकि उसका बच्चा है अच्छे से ग्रो करे अंदर। आपको बहुत छोटी सी बात नहीं पता होगी जो कि प्रूवन है बहुत सारी स्टडीज में, कि जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं और एक सीजरन बॉर्न बेबी होते हैं, तो जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता है उसका इम्यून सिस्टम, उसका इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा होता है। दैट्स इन प्रूवन थिंग। हमें इस एंगल पर भी काम करना चाहिए कि आजकल पेरेंट्स अक्सर फैमिली प्लानिंग करते नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी की प्लानिंग होती ही नहीं है, उसको कई सालों पहले से आपको अपने आप को तैयार करना है ताकि आप एक हेल्दी बच्चा समाज को दे सकें। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद देखते हैं कि शुरू का जो 6 महीने का टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस पीरियड में बच्चे का सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो नींव भरती है, वो भरती है, चाहे इम्यूनिटी का हो, चाहे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हो, चाहे उसका शारीरिक विकास हो। उस समय 2 चीज़ें होती है बच्चे का, एक तो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, तो बच्चे को बाहर की बीमारियों से बचाना भी है हमको, और बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा करना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसको पहली वैक्सीन्स कहते हैं, वो है माँ का दूध। माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे स्टडीज में ये प्रूवन हुआ है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो अक्सर बीमार नहीं पड़ते हैं। माँ का दूध केवल उसी समय पेट भरने के लिए नहीं होता है, बल्कि 100 साल तक के लिए, लाइफ लॉन्ग बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज हैं आज के टाइम में, जैसे कि एलर्जी है, अस्थमा है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, बहुत सारी कैंसर्स हैं, इन सब से आपको बचाना है बच्चे को, तो सिंपल है कि बच्चे को 6 महीने माँ का दूध पिलाया जाए। इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव मदर फीड, मींस माँ के दूध के अलावा आपको सपने में सोचना भी नहीं है कि कोई एक बूंद भी ऊपर से कुछ देना है। तो ये हमारा 6 महीने तक का टाइम हो। जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि फिर से स्क्रीन अंदर आ जाती है, तो उससे वहाँ आपको बचाना है। 6 महीने के बाद माँ का दूध आपको देना है, किसी और की माँ का दूध आपको देने की जरूरत नहीं है। अब जैसे बच्चा 6 महीने का होता है, अक्सर माँ क्या करती है कि उसको गाय भैंस का या डब्बे का दूध पिलाना शुरू कर देती है, तो उससे आपको बचना है। आप उसको खाना देना स्टार्ट करिएगा, माँ का दूध चलने दीजिए 2 साल तक के लिए, साथ साथ में उसको खाना देना स्टार्ट किए। तो इस तरीके से हम बच्चे को 2 साल तक डेवलप कराते हैं। उसके बाद फिर आपको हेल्दी डाइट, बैलेंस्ड डाइट, हम सब जानते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, मम्मी को बिजी लाइफस्टाइल हो गया है, सबको शॉर्टकट चाहिए, इतने सारे बेबी फूड आ गए, इसकी इंडस्ट्री देखिए कितनी बड़ी हो गई बेबी फूड की, एंड देर ऑल प्रोसेस फूड, दे आर ऑल जंक फूड, एंड दे आर वेरी वेरी डेंजरस, दे प्रमोट ओबेसिटीज, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, एडिक्शन होता है। अगर आपने कभी एक बार कुछ जंक फूड ले लिया, आपको घर का खाना बच्चों को अच्छा लगेगा ही नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को वो जंक फूड कभी भी, क्योंकि बहुत हाई शुगर होता है उनके अंदर, बहुत हाई सॉल्ट होता है, और जैसे ही बच्चा वो खाना खाने के बाद फिर घर का खाना खाता है तो उसको वो किक नहीं मिलती है, उसके ब्रेन में वो जो अच्छा एक्सपीरियंस है वो नहीं होता है, तो बच्चा फिर घर में खाना खाता ही नहीं है। तो इस तरीके से जैसे बच्चा और बड़ा होता है, उसके बाद आपको बच्चे को जितना हो सकता है उतना प्ले टाइम देना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ जब स्कूल जाने लगे तो आपको बच्चे को अच्छा प्ले टाइम देना चाहिए, इससे बच्चा स्क्रीन से ही बचेगा, उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। बाकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए मैडम कुछ आप एड ऑन करना चाहें इसमें?
1: जी ज़रूर जी, बताइए कि जी कि कैसे बच्चों के, ये तो उन्होंने बताया डॉक्टर तोमर ने, शारीरिक विकास कैसे करें, आप हमें बताएं कि मानसिक विकास बचपन से बच्चे का कैसे करें कि जिससे वो बड़ा होते होते प्रॉपर उसकी मेंटल डेवलपमेंट हो जाए।
2: हाँ जी, देखिए जैसे ही बच्चा आ गया, बाहर आ गया जैसे बच्चा, तो उनके पेरेंट्स को उनको पार्क में ले जाए, फिर पार्क में जैसे जाएंगे तो पेड़ पौधों के साथ जब रहेंगे बच्चों, वो अलग ही एक नेचर से इंट्रोडक्शन होएगा बच्चों का। सो ऐसे करते करते थ्रू आउट एवरी डे एक पार्क का हैबिट बनाइए, तो बच्चा थोड़ा बड़ा होएगा, खेलेगा, नंगे पैर पार्क में चलेगा, ग्रास के साथ उसका ग्राउंडिंग होएगा, तो जो ग्रास के साथ उसका पैर में चलने से वो जो डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट लेवल का होता है। फिर बचपन से ही ट्राई करने के लिए कि योगा करें बच्चे, थोड़ा

0: सा मेडिटेशन करें, मेडिटेशन मेडिटेशन के रूप में नहीं, साइलेंस प्रैक्टिस करें, बोले कि थोड़ा थोड़ी देर शांत रहो। तो ये शुरुआत कैसे करेंगे, पहले 5 मिनट से करेंगे, एक हफ्ता 5 मिनट किया, 2 हफ्ता 10 मिनट किया, तो जब बचपन से ही करेंगे बच्चे तो उनका आदत लग जाएगी। फिर घर में देखेंगे कि प्रेयर्स हो रहे हैं, पूजा पाठ होता है, तो पूजा पाठ से भी शांति मिलती है, जो इसेंस का जो खुशबू आता है उसमें भी एक आराम मिलता है नसों को, नर्वस सिस्टम को। फिर हम आते हैं, जैसे मैं साइको न्यूरोबिक्स प्रैक्टिशनर भी हूँ, वो है हाई लेवल ऑफ मेडिटेशन। तो जैसे मैंने बोला, बचपन से ही थोड़ा थोड़ा करके साइलेंस प्रैक्टिस किया, फिर मेडिटेशन किया, फिर हाई लेवल पे गए। तो जब जब जितना आप मेडिटेशन करोगे, साइलेंस प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका नर्वस सिस्टम कूल होएगा और आप झगड़ा नहीं करोगे बड़े होके। आजकल क्या होता है, रोड रेजेस होते हैं, रोड रेजेस में क्या होते हैं, झगड़ा अशांति शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखा है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि दिस इज़ नॉर्मल, बट ये नॉर्मल नहीं है। तो इसीलिए घर का माहौल एक उचित देने के लिए माँ बाप का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता
1: जैसे
0: है।
1: अभी आपने कहा कि कोई इंसिडेंट हो गया, झगड़ना शुरू करते हैं, हाँ, इसी से रिलेटेड एक मैसेज हमारे पास आया है। ये लिखते हैं, नमस्ते मैडम, आई एम फ्रॉम गैंगटॉक, हाउ टू कॉम्बैट द टेम्पर टेंट्रम एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट।
0: हाँ, इसमें मैं अच्छी तरह बताऊंगी, क्योंकि ये मैंने अच्छी तरह थेरेपी में मतलब ठीक किया है कुछ बच्चों का। देखिए, जैसे ही बच्चा बहुत हाइपर हो जाता है, छोटा बच्चा भी बहुत हाइपर होता है, ऐसा नहीं कि सब बड़े बच्चे होते हैं, तो जैसे ही हाइपर हो जाते हैं तो एकदम पूरा माहौल शांत करते, ये नहीं कि पेरेंट्स उसी टाइम ही बच्चों को सब कुछ सीखते, नहीं, वो वेट करें जब बच्चों का क्रोध शांत होएगा। देखिए, एक थॉट जब आती है, वो थॉट शरीर में 3 घंटे से पहले नहीं जाती है, और वो थॉट शरीर में 60,000 से लेके 2 लाख तक थॉट्स पर डे एक इंसान को आता है। तो जब सोचिए, जब क्रोधित बच्चा या कोई भी क्रोधित जब होता है, तो वो कितना ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है वो थॉट प्रोसेस। तो इसीलिए माँ बाप को चाहिए कि शांति से सुलझाएं। पहले भी मैंने बोला कि कहानियों के माध्यम से उनको समझाएं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर उनको एक्टिविटीज़ के थ्रू समझाएं, लेकिन समझाना ज़रूरी है, लेकिन उस समय नहीं, थोड़ी देर बाद।
1: लेकिन उसके लिए माँ बाप को भी शांत रहना जरूरी है। कई बार होता है पेरेंट्स भी रिएक्शन कर जाते हैं, वो भी उनको डांटने लगते हैं। इस पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: हाँ जी, पहले तो आप तीनों साहिबान को नमस्कार और आभार।
1: नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
2: जी, मेरे 4 सीधे साधे भोले भाले सवाल हैं और एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश।
1: हाँ जी बताइए।
2: तो पहला सवाल मेरा ये है कि आप एक मुकम्मल परिवार किसे कहेंगे, क्योंकि कई फैमिली में 2 ही लोग रहते हैं, कई में 4 रहते हैं, कई में 8 रहते हैं, कई 15-20 भी रहते हैं, कुटुम्बदर भी अच्छी खासी रहती है। तो आप एक कम्प्लीट परिवार की परिभाषा मतलब किसे कहेंगे, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल की होता ही है कि बच्चे माँ बाप तो बिल्कुल बिंदास बेखौफ होके बात करते हैं, कोई भी उन्हें रिक्वेस्ट करनी है, कोई डिमांड करनी है, और जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ उनको उनके सीनियर से कुलीग्स मिलते हैं, तो वहाँ वो भीगी बिल्ली कायर बुजुर्ग बन जाते हैं, तो उन्हें मानसिक रूप से कैसे स्ट्रांग किया जाए। तीसरा सवाल मेरा ये है कि बच्चे माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हाथ पैर छूने चाहिए, उन्हें ब्लाइंड फेक ब्लाइंड फॉलो करना चाहिए, उनके सामने जुबान नहीं खोलनी चाहिए। अब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ सीनियर्स में उनकी मजबूरी का शरारत का फायदा उठाते हैं, इस पे हमें क्या करना चाहिए। चौथा सवाल मेरा ये है कि इन दिनों देखा जा रहा है हिंदुस्तान में कि संयुक्त परिवार जो है वो एकांकी परिवार में कन्वर्ट हो रहे हैं, तब्दील परिवर्तित, तो इसकी वजह क्या है। और पांचवी आखिरी रिक्वेस्ट है मेरी, गुजारिश आप सबों से कि जैसे बड़े बुजुर्ग प्यार के भूखे हैं ना मान सम्मान के, ऐसे बच्चे भी हैं प्यार के भूखे मान सम्मान के, तो उन्हें मान सम्मान देना और उन्हें प्यार करना सीखे, क्या कहेंगे आप, प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: तो डॉक्टर तोमर, जैसे कि इन्होंने सबसे पहले पूछा था कि अच्छे परिवार की डेफिनेशन क्या है, किसे कहेंगे?
3: देखिए, शायद आपने
1: जैसे हमारा हाँ इंटरनेशनल
3: हमने शुरुआत ही वहीं से करी थी कि परिवार क्या होता है। बेसिकली जहाँ स्नेह संरक्षण उत्तरदायित्व और संस्कार होते हैं, संस्कार में जैसे आपने बोला वो सब कुछ आ जाता है। जब संस्कार की बात करते हैं तो जैसे बाहर बच्चे जाते हैं तो वो बिगी बिल बन जाते हैं, या वो कैसे बिहेव करेंगे या कैसे रिएक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमारे एक उसमें भावनात्मक उसमें आती हैं, ये यही वैल्यू हमें सीखनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें सिखाना ये परिवार

0: ज़िम्मेदारी होती है। दूसरा आपने बोला कि रिस्पेक्ट, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, छोटों की भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। डेफिनेटली बच्चे को भी उतना ही रिस्पेक्ट चाहिए होता है जितना बड़ों को चाहिए होता है। तो वो बच्चों को हमें सिखाना है कि उन्हें कैसे करना है, और बच्चे को बहुत ज़्यादा हम करेक्ट नहीं करें। दिन भर हम बच्चे को करेक्ट करते रहते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बल्कि उसको जब भी बच्चा कोई गलती करता है तो उससे आप सवाल करिएगा, ताकि उसका अपर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, जो ब्रेन में जो कॉर्टेक्स होता है उसका एक इन्वॉल्वमेंट होता है। अदरवाइज क्या है कि दिन भर बच्चा वही सुनता है, आप ये मत करो, आप वो मत करो, तो उसका भी स्पाइन लेवल पर रिप्लाई आने लगता है फिर वो। तो उस तरीके से करना है। संयुक्त परिवार का होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, इंसान आजकल जो है वर्टिकल ग्रोथ कर रहा है। वर्टिकल ग्रोथ मतलब ऊंचाइयों पर जा रहा है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वो आसपास की चीज़ें फिर दिखाई नहीं देती हैं, तो वही हो रहा है। ये सही समय कि हमको हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करना चाहिए, हमको अपने आसपास देखना चाहिए, अड़ोस पड़ोस में देखना चाहिए, इससे हमारी सोशल हेल्थ अच्छी होती है, लोगों से मिलना चाहिए। बल्कि दिल्ली जैसे शहरों में मेट्रोज में तो हालत ये है कि ऊपर वाला नीचे वाले को जानता ही नहीं है कि वो कौन रहता है। इससे डेफिनेटली हमारी हेल्थ अच्छी होती है। ये सोशल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ।
1: किया जी, जैसे इन्होंने एक ये भी पूछा था कि बच्चे घर में तो बिंदास डिमांड करते हैं लेकिन बाहर जाकर बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, तो ऐसे में उनका मानसिक विकास कैसे किया जाए?
2: देखिए, ये ह्यूमन नेचर है कि बाहर दिखाना है कि हम बहुत ही सही है, और घर के अंदर वो अपने आप को नॉर्मली बिहेव करते हैं, और उनका नॉर्मल है कि वो जिद करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज़ देयर नॉर्मल थिंग। बट बाहर तो दिखाना ही है कि हम इतने अच्छे हैं। तो ये सब कुछ शुरुआत होती है वो घर से ही, जैसे आपका घर का फैमिली का प्रोग्राम।
1: नहीं, वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि वो बाहर नहीं बोलते।
2: हाँ,
1: घर में तो बोलते रहते हैं लेकिन बाहर बिल्कुल चुपचाप रहते हैं। तो वो बाहर भी जैसे आजकल होते छोटी फैमिलीज हैं, ठीक है, बच्चे पोजेसिव हो गए, रिजर्व हो गए, बाहर उतने सोशल नहीं है, तो उनको सोशल कैसे बनाया जाए, वो ये पूछना चाह रहे हैं।
2: हाँ, तो उनकी पर्सनालिटी क्लासेस होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस होते हैं, वो बच्चों को डालना चाहिए। फिर काउंसलर्स होते हैं, उनके थ्रू से बच्चों का डेवलपमेंट हो सकता है। फिर हमारे जैसे NLP मास्टर प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके थ्रू से हो सकता है। लेकिन एक प्रॉपर हेल्प चाहिए कि अगर देख रहे हैं कि बच्चे कंटिन्यूसली ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो घर पे नहीं हो पा रहा है, तो एक प्रोफेशनल उनको हेल्प लेना चाहिए।
1: लेकिन बच्चों को रिजर्व टू सोशल बनाने के लिए पेरेंट्स उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं?
2: पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे ना, स्कूल के टीचर्स से मिल के, उनसे बात करके, उनसे डिफरेंट टाइप के काउंसलिंग लेके, फिर वो भी इन्वॉल्व होंगे और फिर डिफरेंट टाइप के प्रोफेशनल हेल्प लेंगे।
1: एक श्रोता है हमारे साथ जो जुड़ना चाहते हैं। हेलो।
3: हेलो, नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: मैं उत्तराखंड से रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ। दोनों डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार ठाकुर,
1: नमस्कार। जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: मेरा प्रश्न ये था, मैंने अपनी बिटिया के बारे में पूछना था।
1: जी बताइए।
3: जैसे मानसिक रूप का उससे आज ये प्रोग्राम था, तो ये मानसिक होता है या ऐसा, जैसे बिटिया हमारी 24 साल की है तो उससे पहले भी स्कूल से कि ये ऐसे हवा लग गए करके हो जाती थी, जैसा मोर्चित हो जाती थी, बेहोश टाइप की, या कभी कुछ जैसे डेथ केस हुए थे तो उसमें भी वो बेहोश हो जाती थी, जैसे कभी पूजा पाठ करती है तो कभी कभी उसमें उसको हो जाती है, बेहोश टाइप की हो जाती है, कि तब मानते हैं ना ये घर का कोई ऐसा कुछ दोष हो या कुछ ऐसा, या कुछ हवा या कुछ ऐसा, तो ये मानसिक होता होगा या क्या होता होगा, इसका तो समझ में नहीं आया।
2: मैं बताती हूँ, ये दोष वोष कुछ नहीं होता है, ये जो अफेक्ट होता है, शॉक मिलता है किसी की डेथ के वजह से, वो माइंड में चलता रहता है। जितना माइंड में चलेगा वो उतना ही दिखता, बड़ा बड़ा दिखता रहेगा। तो आपकी बेटी को थोड़ा प्रोफेशनल हेल्प चाहिए इस वक्त, ताकि वो इस चीज़ से निकल आए। जैसे ही वो निकल आएंगे फिर वो घर के माहौल में फिर संभल जाएंगे, बट अभी के लिए आपकी बेटी को थोड़ा सा डॉक्टर का या किसी का, काउंसलर का, साइकोनोरोबिक्स होए या साइकोपैथ होए, उनसे हेल्प चाहिए।
1: इस पर डॉक्टर, इस पर क्या जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे कई बार होते हैं कि स्कूल में पढ़ाई का लोड हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, कुछ बच्चे होते हैं वो इमिडिएटली हैंडल कर लेते हैं।
2: हाँ जी।
1: कुछ होते हैं उसको एक दिन सोचते रहेंगे, कुछ होगा हफ्ते भर सोचते रहेंगे, कुछ महीनों सोचते रहेंगे।
2: हाँ जी।
1: उसकी वजह से वो चीज़ सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच पाती, ना ही उसका रिजल्ट मिल पाता।
2: नहीं,
1: तो ऐसे में तो उन अलग अलग बच्चों के हिसाब से क्या करना चाहिए?
2: देखिए, कुछ तो अपने में ही होता है, कुछ तो तूफानी बच्चे होते हैं, कुछ स्लो डेवलपमेंट करते हैं, तो वो बच्चे टू बच्चे डिफर करते हैं। लेकिन हम उन बच्चों को डिफरेंट, जैसे कि स्पेशल क्लासेस के थ्रू टीचर्स उनको हेल्प करेंगे, और माँ बाप को चाहिए कि

0: होगे पहले ज़माने के तरह, तो ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करेंगे तो ही बच्चे ठीक हो पाएंगे। तो माँ बाप पे फिर आ जाता है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की आजकल बहुत ज़रूरी है। और इंस्टा पे तो आजकल सारे टाइप के रील्स ऐसे होते हैं कि एडिक्शन हो जाती है।
1: बिल्कुल
2: जी, इसी पर एक मैसेज भी हमारे पास, ये लिखते हैं, सभी को मेरा प्रणाम। प्रेगनेंसी के दौरान माँ के लिए हेल्दी डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए जिससे कि माँ एवं बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। हेमचंद्र भट्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य, उत्तराखंड।
1: देखिए सर, लाइफ को चलाने के लिए आपको कोई डाइट चैट की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे कल्चर में था, आपको सबको पता होता कि हेल्दी फूड क्या होता है। स्वस्थ खाना खिलाइए, अच्छा खाना खिलाइए, नेचुरल खिलाइएगा, प्रोसेस फूड नहीं देना है, जंक फूड नहीं देना है, और जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल सब्जियां हैं, वो अच्छे से खिलाइएगा और मानसिक रूप से उनको जो है सपोर्ट कीजिएगा, तो आपका बच्चा हेल्दी होगा।
2: एक और मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, अगर बच्चे घर पर तो दंगा करते हैं लेकिन बाहर जाकर और ज़्यादा दंगा करते हैं और डिमांड करते हैं मोबाइल दो, इसके लिए क्या किया जाए, प्लीज़ कृपया निर्देशित करें। कि हाजी क्या कहेंगे, ये लिखा है डॉक्टर शिवराज सिंह ने।
0: बच्चे की उम्र क्या है, ये बहुत ज़रूरी है।
2: ये उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो अगर हम ले, ये बच्चा है तो मेरे ख्याल से 10
1: डेफिनेटली
2: हाँ, 10 से
1: 15
2: साल, हाँ कोई भी हो सकता
0: है। क्योंकि ज़्यादा छोटे बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दे, ये स्ट्रिक्टली फॉलो करें।
2: दंगा करते हैं और बाहर जाके और करते हैं,
0: हाँ तो उनके जिद पे ना आए ना, यही तो है पेरेंटिंग।
1: बच्चे को जो है आपको शुरू से ही कंट्रोल करके चलना है, और इसे वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि बच्चे को आपको पैम्पर नहीं करना है, आप बच्चे को संस्कार दे। एक सिंपल सी, एक छोटी सी, आपको हमेशा याद रखनी बच्चों के मामले में कि बच्चा आपका कच्ची मिट्टी होता है,
0: ठीक,
1: और आप जो है कुंभकार हैं, आप कैसा शेप देना चाहते हैं, कहाँ आपको अपने हाथ को टाइट करना है, कहाँ आपके हाथ को लूज करना है, कितना सुंदर शेप आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। आजकल उल्टा हो गया है, पेरेंट्स कच्ची मिट्टी हो गए हैं,
0: ठीक,
1: बच्चे उसको मोल्ड कर रहे हैं, जिद किया, तो वो तो बच्चा आपका एडिक्टेड हो चुका है। बहुत से बड़े अडल्ट होते हैं, वो ड्रग्स के लिए जिद करते हैं, कोई ड्रिंक के लिए जिद करता है, तो अल्टीमेटली आपको समझना होगा।
2: आज ही जैसे कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज है, तो हम उस पर बात करें, पेरेंट्स जहाँ इतना बिजी रहते हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, तो हफ्ते में एक दिन क्या उनको बच्चों के साथ बिताना चाहिए, उनके साथ प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एक्टिविटी करना चाहिए, ये कितना ज़रूरी है शारीरिक विकास के लिए, डॉक्टर तोमर आप बताइए।
1: देखिए अक्सर ये बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है, और बहुत परेशान होते हैं अक्सर मम्मियाँ, तो उसके लिए सिंपल है कि जब भी आप बच्चों को खाना खाते हैं, आप जो खाना खा रहे हैं वही बच्चों को खिलाना है, और अक्सर फैमिली फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बिल्कुल डिजिटल फ्री एरिया होना चाहिए जिसमें आपको बच्चे के साथ बैठ के खाना खाना है। चलते चलते मैं एक आपको बड़ा छोटा सा मंत्र देकर जाता हूँ कि एक परिवार होता है, परिवार सुखी कैसे रहे, स्वस्थ कैसे रहे, तो उसके लिए हमारे बहुत पहले से एक कंसेप्ट हुआ करता है परिवार के लिए क्या ज़रूरी है, कि यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्त्रे तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ सुख समृद्धि आती है, उसका मतलब ये है। तो घर में जो आपके लेडीज हैं, जो महिलाएँ हैं, बच्चों की माँ हैं, दादी हैं, आप उनको प्रॉपर इज्जत देंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, झगड़े कम होंगे, खुशियाँ रहेंगे और सब स्वस्थ रहेंगे।
2: और क्या जी, आप क्या मैसेज देंगे जाते जाते हमारे श्रोताओं को, जिससे कि पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है और बच्चों के लिए, जिससे उनका मानसिक विकास सही ढंग से हो।
0: हाँ जी, बच्चों के लिए है कि बच्चे जो माँ बाप बोले वो करें, और पेरेंट्स के लिए है कि बच्चों को एक्सेप्ट करें अनकंडीशनल, उनकी सुने, उनके साथ रहें, उनके साथ समय व्यतीत करें, उनके साथ साथ सारे कार्य करें ताकि बच्चे भी खुश रहे। और जादू की छप्पी बहुत ज़रूरी है।
2: जी हाँ, इसे ही कहते हैं फैमिली बॉन्ड। अगर फैमिली बॉन्ड अच्छा होगा, आपस में प्यार होगा, तो सब आपस में खुश रहेंगे। श्रोताओं, अगर परिवार में संवाद, समानता और सहयोग हो, तो हर बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होकर आगे बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हमें यही संदेश देता है कि बच्चों का बेहतर कल एक बेहतर परिवार से शुरू होता है। आज रेडियो डॉक्टर में हमारे साथ रहे हमारे दोनों विशिष्ट अतिथियों डॉक्टर MS तोमर और KR चटर्जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू।
2: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जागरूकता ही बेहतर स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है, और यही संदेश लेकर आता है आपका अपना कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाजत, फिर रूबरू होंगे नए विषय के साथ। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी

गांव वालों बसंती को समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालों अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। मां कसम सुनते रहिए 102.7 एफएम रेनबो।

0: कौन? मैं बाहर चौंक च खड़ गई क्या, मैं कहा मुझको पहचान लो, मैं हूँ कौन? कहते क्यों, तेनू आप नहीं पता है? सो खैर कोई गल नहीं जी, हैलो जलंधर प्रोग्राम चल रहा है, इतने मैनू मेरे दोस्त जरूर जानते हैं जी कि कौन दोस्त उन्होंने जुड़े हुए हैं। सो आओ जी पहले कॉलर दोस्त का स्वागत करते हैं, जानते हैं अज कि ममिक्री करे। हैलो हैलो,
1: हेलो बच्चन जी, सत श्रीकाल।
0: प्यार भरी सत श्रीकाल जी।
1: मैं कुलदीप सिंह बोलता, पिंड लाडी सुरती, जिला लुधियाना जी।
0: कुलदीप जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, मैं जी की हाल चाल ने ताडे?
1: बहुत बहुत स्वागत।
0: क्या बात है, शुक्रिया जी। अज तुहानू पता ही है जी, फिर शर्त ताडी पूरी करनी आपां, ते शर्त

0: आज केड़ी मिमिक्री करेंगे। हेलो हेलो
1: हेलो बच्चन जी, सत श्री अकाल।
0: प्यार भरी सत श्री अकाल जी।
1: मैं कुलदीप सिंह बोलता हां, पिंड लादी सुरपुर जिला लुधियाना जी।
0: कुलदीप जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं जी की हाल चाल ने ताडे?
1: हां सर
0: बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया जी। अज तुहानू पता ही है जी, फिर शर्त ताडी पूरी करनी आपां, ते शर्त ताडी पूरी आपां किद्दां करनी उह वी तुहानू पता है ना जी। गाने दी जिहड़ा तुसीं फरमाइशी गीत लै गए हो, फिर किहड़ी अज मिमिकरी करन वाले हो तुसीं?
1: सर जी मैं छोले मूवी दा बोलणा जी।
0: छोले मूवी दा डायलॉग दी मिमिकरी करोगे? किन्हां दी आवाज़ च?
1: गब्बर दी।
0: गब्बर सिंह दी आवाज़ च तुसीं मिमिकरी करोगे? हाँ जी
1: हाँ जी।
0: अच्छा पहला ये दस दिओ कि डायलॉग किहड़ा है जी। बॉस कालिया? बॉस मैं कालिया नहीं हैगा, मैं हैगा सांबा। बॉस ना भूल गया मेरा? बॉस सांबा या मैं इदा बोलो सांबा। अरे ओ सांबा कितने आदमी थे, इदा पुछो।
1: ओ सांबा कितने आदमी थे वो?
0: अब बॉस दस, मैं इतने डेयरी लाई है यार, मैनू की पता किन्ने आदमी से। तुम हसन लग पे बॉस, तुम हसना नहीं है, तुम अपने करैक्टर च रहना, थोड़ा गुस्से वाला, होर थोड़ा गुस्से वाला। तू कह तेन तनखाह नहीं दिता मैं। अच्छा चलो चलो, हम सीरियस करते हैं। हाँ जी कुलदीप जी दोबारा प्लीज।
1: हेलो।
0: हाँ जी हाँ जी, मैं कह जी दोबारा डायलॉग बोल। दो सरदार
1: वो दो थे तुम तीन, फिर भी खाली हाथ आ गए।
0: जी सरदार माफ कर दीजिए सरदार, मैंने आपका नमक खाया है।
1: इज्जत मिट्टी में मिला दिया तुमने।
0: माफ कर दीजिए सरदार, मैंने आपका नमक खाया है,
1: अब गोली खाओ।
0: सरदार माफ। बहुत बहुत शुक्रिया जी सरदार, तुम गोलियां मार के बंदा मारता, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत वधिया लगा कुलदीप जी। पहले मिमिकरी दोस्त साडे पूरी कोशिश की जी, उन्होंने है पूरे डायलॉग उन्होंने।
1: अपना गाना ला दो सरजीत सिंह दा रखी दा कोई भी।
0: मैं क्या जी बस, तुम देखो भंगड़ा पाओगे तुम, इदा का गाना लावे आप। थैंक यू जी कुलदीप जी ने, मैं जी रौनक बनतियां और गाने ने भी रौनक बन देनिया, पर मैं चाहिए ने मेरे इदा के ही होर बहुत सारे दोस्त जे अज के प्रोग्राम के सिर्फ तो सिर्फ मिमिकरी जरिए ही अपनी फरमाइश पूरी करवा सकेंगे। किसी भी कलाकार की मिमिकरी कर सकते हो, कोई डायलॉग बोल सकते हो, या फिर उन्होंने आवाज़ से गल कर सकते हो जी मेरे न, और मैं भी कोशिश करा कि किसी होर कलाकार की आवाज़ से गल कर। अज आप इदा ही इस प्रोग्राम से रौनक लगा, फिलहाल रौनक लगाने के लिए सैट पर गाँव आने लगे जी सुरजीत बिंद्रेखिया साहब की आवाज़। जेकर तुसी कॉल करनी है नंबर एक बार दस दें जी 0181 2341 74।

0: मुहब्बत मुहब्बत मुहब्बत मुहब्बत हो रही है जी अज आकाशवाणी के वेड़े के एफ एम रेनबो के उत्ते चल रहा प्रोग्राम हैलो जलंधर ते अज सिलसिला चल रहा जी डायलॉग बाजी नूं लैके कि किहड़े दोस्त ने जिहड़े सब तो खूबसूरत डायलॉग डिलीवर करनगे ते किस दमदार एक्टर या एक्ट्रेस की आवाज़ के विच ओह डायलॉग साडे नाल सांझे करनगे। फिलहाल साडे अगले कॉलर दोस्त जुड़ चुके हैं, आओ जी उन्हां नाल करदे हां गलबात। हैलो,
1: मैं और मेरी भाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ना होती तो कैसा होता, कभी तुम ये कहती कभी तुम वो करती, कभी इस बात पर हैरान होती। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं
0: जी।
1: जी नमस्कार,
0: प्यार भरी नमस्कार जी।
1: सतीश गुलियानी, दिल को शाह मार्केट, जलंधर।
0: सतीश जी बहुत बहुत स्वागत करते, थोड़ा की हाल चाल ने? कुछ देर दे जो तुसी शायरी दे शुरू हो गया, मैनू लगा टाइम देखा मैं हैलो जलंधर का टाइम है, दिल आज शायर नहीं शुरू हो गया दोबारा। अच्छा जी चलो ठीक है, ये भी एक अलग तजुर्बा। अज फिर तुम्हें पता जी टॉपिक आप एक रखा हुआ अज इस प्रोग्राम
1: मजेदार टॉपिक है जी,
0: मजेदार टॉपिक है। बस जी फिर शुरू हो जाना चाहिए मुझे लगता जी बिना इंतजार तो फिर।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी करिए जी।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: सलाम अलैकुम इंस्पेक्टर साहिब।
0: सलाम, तुम्हारा नाम ही शेर खां है
1: लगता यार, नया है इंस्पेक्टर, वरना शेर खां को कौन नहीं जानता। बैठने को नहीं कहोगे इंस्पेक्टर?
0: जब तक बैठने को ना कहा जाए तब तक खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन।
1: खड़े रहो,
0: अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी जी सॉरी।
1: चुपचाप खड़े रहो जब तक बैठने को ना कहा जाए, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर।
0: तुम्हारे बाप का, क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत खूबसूरत जी।
1: तुम नहीं बोलते इंस्पेक्टर, ये तुम्हारी वर्दी बोल रही है। ठीक है,
0: वर्दी मैंने अपनी, वर्दी मैंने अपनी मेहनत से कमाई है तो बोलेगी।
1: काली का, काली है नाम मेरा, काली का पुजारी हूँ मैं, लिबास भी काला, धंधा भी काला, और जो दुश्मन को कफन बनाता हूँ
0: वो भी काला। क्या बात है।
1: सुनो एक बात सुनते जाओ काली के पुजारी, आज तुम्हारा पाला शेर खां से पड़ा है। हाँ जी हाँ जी, तुम अच्छा।
0: वो मैं कहा जी इतना सन्नाटा हो गया, बंदा एक किस्म ने डर भी जाता है। अच्छा अच्छा जी हाँ जी, ना सच्ची सच्ची धमकियां आ रही होनी ना, तो आप जे उ की खो गए उन्नी की करके ते ए वाले वैसे कहा जाता जी कि थोड़े असी जो प्रोग्राम सुनते हैं ना सेम जो डायलॉग होंगे ने वो काफ़ी रिपीट के भी साढ़े दोस्तों वालों आते हैं ना, एको चीज़ के उपर आप बार बार गल करते हैं। सो असी इस करके कोशिश करते हों कि जी असी हर बार जी है कोई ना कोई नवी चीज़ नवा डायलॉग नवी चीज़ा वे ऐड करिए। अच्छा एक छोटा जहाँ तुम टास्क दे रहे हैं जी, तुम्हें ना शाहरुख खान साहब की आवाज़ के डायलॉग बोलना।
1: मैं शाहरुख खान अपने
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, देखो जी जो बंदा कर सकता वो कर ही सकता ना, वो तो लीक तो हट के करने की कोशिश करिए ना जी, है ना जी। चलो और तुहानू शाहरुख खान का डायलॉग देना, तुसी कहना कि अगर वो मुझसे अगर वो तुमसे प्यार करती है तो वो पलट के जरूर देखेगी।
1: अगर वो तुमसे अगर वो मुझसे प्यार करती है तो पलट के जरूर देखेगी,
0: पलट। इदा लगा जिदा ना जी अपने शाहरुख खान जी दे स्टाइल दे विच अमरीश पुरी साहब विच आ गए होंदे ना। हाँ जी हाँ जी, नहीं बहुत बहुत
1: मेरे पास मोटर है, बंगला है, गाड़ी है,
0: तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। क्या बात है जी, क्या बात है, खूबसूरत जी। चलो जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत वधिया रौनकां लाइयां जी तुसीं अज साडे नाल मिलके, धन्नवाद है जी उहदे लई। असीं तुहाडा करदे आं ते जनाब केड़ी फरमाइश है जी अज असीं जिहड़े
1: तुहाडा वी करदे आ जी, तुसीं सानूं मौका दिंदे हो
0: जी जी जी,
1: क्योंकि घर दा असीं बोल नहीं सकदे,
0: नहीं उत्थे कोई वी नहीं बोल सकदा जी। चलो ठीक है शेर खान साहब, बहुत वधिया लगा जी, ते

0: हो गए ते फिर दोस्तों तुहानू नाल ही दस दिए कि यह दिन यूनाइटेड नेशनस ने 1993 विच अनाउंस किया सी। इसका परपस लोगों नू फैमिली वैल्यूज ते रिलेशनशिप्स की इंपोर्टेंस याद करवाना सी। हर साल इस दिन का एक नवा थीम हुंदा है जिवें एजुकेशन, इक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज या फैमिली हैल्थ। ते दोस्तों रिसर्च तो चलती रहती है फैमिली ते, एक रिसर्च आपां नेहा दी फैमिली ते भी कर लिया। नेहा, जे तुहाडी फैमिली ते कोई मूवी बने ते ओह मूवी दा टाइटल की होएगा?
1: टाइटल था तो शिवम, मैनू सच्ची नहीं पता, बट बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी होएगी जो भी बनेगी, क्योंकि घर दे विच ना डेली कोई ना कोई नवा एंटरटेनमेंट टॉपिक चलिया ही रहिंदा, लग्या ही रहिंदा, कदे कुछ ते कदे कुछ, छोटियां छोटियां गल्लां नू लैके। असीं भैन भरा भी आपस च लड़दे रहे, हुण असीं वड्डे भी हो गए ना, पर फिर भी कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ां ते असीं आपस च लड़ पैंदे आ। ते यूजुअली जिदा तुसीं कहा ना, छोटे नू एडवांटेज मिल जांदा ते वड्डे नू डांट पैंदी है।
0: तो मैनू लगता है कि बस यही गल्लां हुंदियां, तो इदां ही प्यार बनिया रहिंदा, तो फिर बहारां आंदियां रहिंदियां।

0: वेलकम बैक जी 102.7 मेगाहर्ट्ज़ प्रोग्राम चल रहा है युववाणी सेगमेंट चल रहा है जी सिनेमा मेरे नाल आरजे शिवम ते
1: मैं आरजे नेहा दोस्तों तुसी हुणी जिहड़ा गाना एंजॉय कीता है काफी एंटरटेनिंग सी वैसे
0: गाने दे विच जे असी देखिए बड़े नाम वरते गए है मेरा मखणा मेरा सोना मैनूं लगदा घर दे वी सानूं इस कुछ नामां नाल बुलांदे नेहा तुहानूं किस नाम नाल बुलांदे
1: मैनूं तां इदां लगदा ना कि मेरे घर दे मूड दे अकॉर्डिंग बुलांदे जदों उहनां नूं वैसे तां नॉर्मली मैनूं मेरा नाम लैके नेहा ही बुलांदे पर जदों उहनां नूं गुस्सा आंदा है कुछ भी होर कह दिंदे है जो उन्होंने प्यार आंदा है तो कुछ होर के बुला देंगे मतलब कोई पर्टिकुलर नाम ही नहीं है सिर्फ

0: बैठे हैं। जी दोस्तों, असी लेके आए हैं जी आइकॉनिक मूवी थोड़े लिए, हम साथ साथ हैं। तो मैनू लगता है कोई इदा दा लिसनर नहीं होएगा जिन्हें ये मूवी नहीं देखी हुई।
1: बिल्कुल शिवम, मैं खुद ये मूवी इन्नी बार रिपीट ते देखी है ना, मतलब इस मूवी की स्टोरी इन्नी वधिया लगती है ना मैनू कि मैं कदे बोर ही नहीं हुई ये मूवी देख के।
0: पर नेहा, जदों भी ये मूवी देख लो ढिड भरदा ही नहीं है।
1: बिल्कुल शिवम, पता नहीं इस मूवी की स्टोरी विच की एंटरटेनमेंट है ते की है इस मूवी दे विच इन्नी, मतलब फैमिली दे नाल बैठ के देख लो, फ्रेंड्स दे नाल बैठ के देख लो, कदे बंदा बोर ही नहीं हुंदा रिपीट ते देखण तों बाद भी।
0: बस फिर जिहड़े स्रोतियां ने ये फिल्म नहीं देखी हुई उन्होंने दस दी है कि ये मूवी एक परफेक्ट जॉइंट फैमिली की कहानी है। ये थोड़ा प्यार है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है, तो फैमिली तो यूनिटी के नाल रहन की एक बहुत वड्डी सिख है।
1: दोस्तों अज भी जदों मैया यशोदा या ये तो सच है कि भगवान है वजदा है, पूरा घर नॉस्टैलजिक हो जाता है। मतलब इस मूवी के गीत, ओ माई गॉड शिवम, मतलब सुन लो ना बंदा रिपीट से भी गाने सुनता रहे ता भी वह मन नहीं भरता।
0: ते दोस्तों तुम दस दी इस मूवी का बजट सिर्फ 17 करोड़ सी, पर मूवी
1: रही सी सुपर डुपर हिट मूवी।
0: तो मैं लगता है हजे भी साढ़े दिलों के मूवी पूरी सुपर डुपर हिट है। अज भी जो संडे ते ये मूवी लगती है तो मैं लगता ही नहीं है कि नहीं देखी जाए, इन्नी फरी देखी हुई है। अज भी लगता है कि चलो थोड़ी जी देख ही लें,
1: देख ही लें थोड़ी मूवी। मतलब इस मूवी देख के कभी कोई बोर नहीं होया। तो जो मूवी का ट्रैक है ना, जो मैं प्ले कर लगी हाँ, मेरा बहुत फेवरेट ट्रैक है।
0: तो बस फिर दोस्तों एंजॉय करो ये ट्रैक, क्योंकि कुछ ही पला दे विच सेगमेंट शुरू होएगा युवानी टूर्स एंड ट्रैवल्स।
1: ते भुलो ना दोस्तों कॉल करना सानू 0181 143174 ते, क्योंकि आज सानू कमान तुसी लेके जा रहे हो।

0: दोस्तों एफएमएनएक्स 2.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी जलंधर ते प्रोग्राम चल रहा है युवाणी। मैं हां तुम्हारी दोस्त आरजे नेहा
1: ते मैं हां जी आरजे शिवम।
0: प्रोग्राम साडा शुरू हो गया युवाणी टूर्स एंड ट्रैवल्स। जिवें कि मैं तुहानूं कहा सीगा कि अज सानूं घुमान तुसीं लैके जा रहे हो, असीं नहीं तुहानूं लैके जा रहे किते वी।
1: ते बस फिर साडे नाल इक लिसनर जुड़ चुके ने ते फिर उहनां नाल गल्लबात करदे ते उहनां नूं पुछदे आ कि सानूं कित्थे घुमाण लैके चले अज। हैलो हैलो हैलो हैलो, मैं लगता कुछ तकनीकी खराबी करके नेहा वो साढ़े तो थोड़ा जुदा हो गए ने।
0: कोई गल नहीं दोस्तों, असी एक छोटा जा म्यूजिकल ब्रेक लैने हैं तो उन्नी देर तक तुसी अपने अपने फोन चक लो तो डायल करो 0181 2342174 ते सानू फोन करके दसो अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन ते सानू भी कितने घुमान लैके जाओ। गल्लां बातों का सिलसिला चलता रहेगा, इंजॉय करते हैं एक प्यारा जहा ट्रैक ते वेट है ताड़ी कॉल्स का।

0: भी जुड़ सकते हो।
1: ते करना कुछ ज्यादा थोड़ी है, बस डायल करना है 0181-143-174 ते बस सानू घुमान लेके जाना तुसी किसी वधिया दी जगह ते साडे लिसनर्स नु भी नाल ले ते एंजॉय करो एक पैराजा ट्रैक। फिर मिलते हैं आपां।

0: जी आ गए हैं जी एक बार फिर तो आकाशवाणी के स्टूडियोज दे विच ही। ते मैनूं पता ही नहीं लगा ये घड़ियां किद्दां 6 बजे ते पहुंच जांदियां ने। हां
1: बिल्कुल शिवम, समय तो पता ही नहीं लगता लिसनर्स नाल गलबात करके, ते अज घूम के भी बहुत मजा आया वैसे।
0: ते फिर असीं आवांगे इसे प्रोग्राम दे विच किसे होर दिन किसे होर तरीक नूं। हुण चलदे हां ते फिर मिलांगे। चलते
1: चलते फिर से मिलेंगे, ते मुलाकात तो होंदी रहती है हर रोज़ तुहाडे नाल। ते दोस्तों अज दा

प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड वाली ईवनिंग है जी, और शुक्रवार की सुहावनी शाम नू होर भी यादगार बनाने लई तुहाड़ा दोस्त बिपन सुमन तुहाडे नाल जुड़ चुकिया जी। 102.7 FM रेनबो दे तुहाडे अपने शो लव यू जिंदगी च। दोस्तों, अज हफ्ते का वो मोड़ है जिथे असी सारे वीकेंड के सपने देखने शुरू कर दें, पर याद रखियो कि जिंदगी सिर्फ शनिवार एतवार विच नहीं बल्कि हर उस पल विच है जिसनों असी जिउंदे हां। अज असी उन्हां लोकां बारे गल करांगे जिन्होंने दुनिया नूं दस्या कि सपने देखण की कोई एक्सपायरी डेट नहीं हुंदी। सो बस अगले घंटे के सफर के दौरान बने रहना है तुसीं अपने दोस्त ते अपने फेवरेट प्रोग्राम लव यू जिंदगी दे नाल।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है।

वेलकम बैक जी, एफ एम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है जी। और रेनबो चैनल ते इस वेले चल रहा प्रोग्राम लव यू जिंदगी। दोस्तों, आज दे दौर विच जिथे वड्डियां कंपनियां सिर्फ मुनाफा देखदियां ने ना, उत्थे ही जापान दे कामी शिराटकी रेलवे स्टेशन दी कहानी है जी, वो तुहाडे नाल मैं सांझी करता। कहिंदे कि कुछ साल पहले ना उत्थों दी रेलवे ने फैसला किया कि ये जिहड़ा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम का जिक्र किया कि कामी शिराटकी, इस रेलवे स्टेशन नूं कहिंदे बंद कर दिता जाए क्योंकि इत्थों कहिंदे कोई ज़्यादा सवारियां नहीं मिलदियां। पर जदों उन्हां नूं पता लगा ना कि उत्थे एक स्कूल जाण वाली लड़की है जो रोज़ उस ही ट्रेन तों पढ़न जाती है, तो उन्होंने फैसला किया कि वह अगले 3 साल तक सिर्फ उस कुड़ी की खातर इस ट्रेन को चलता रखेंगे जब तक उसकी ग्रैजुएशन नहीं हो जाती। दोस्तों, ये कहानी सानू सिखाती है ना इंसानियत ते सिक्ख्या का मुल पैसे तो कितने वड्डा हुंदा है। जे असी भी एक दूजे के सुपनों का इन्ना ही ख्याल रखिए तो यह दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। दोस्तों, मिट्टी हुंदी है ना, मिट्टी तो ही पत्थर बनता है तो मिट्टी तो ही दीवा बनता है। हुण डिसाइड असी करना है कि असी किसी दे रस्ते दा दीवा बनना चाहुंदे आ या असी किसी दे रस्ते दा पत्थर बनना है। जो असी करांगे ओहो जिहा नतीजा सानू मिलेगा। बस मैं तो एको गल कहना चाहवांगा दोस्तों, हमें

दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है लव यू जिंदगी, पर ये उन्नी देर तक सार्थक नहीं है जदों इहो जिहियां चीज़ां साडे आस पास वापरदियां ने। कहिंदे ने कि दूजे घर अग ते अपने घर बसंतर, ते जदों उही अग साडे घर नूं पैंदी है तद जाके सानूं इस चीज़ की समझ आती है कि ये गल्लां साडे वास्ते किन्नियां जरूरी ने। या गल कर लो कि सियाणे दा क्या औले दा खादा, बाद च पता चलता है। तो उही चीज़ां ने जी, अगर असी समय के उपर ही इन्हां गल्लां नूं सोच समझ के अपना लें तो साड़ी हिफाजत दे नाल नाल असी अपने परिवार की हिफाजत भी करते हैं। जरा सोच के देखो उस इंसान बारे जो इकलौता घर का जी है, तो घर के खाण पीन वाले मैंबर जीवन के उसके पिता जी जो बजुर्ग ने, माता बजुर्ग ने, उसकी वाइफ जो हाउस वाइफ है, तो उसके तीन बच्चे, तो घर एक छोटा भरा, एक भैन जिसका विआह होने वाला है, तो वह इकलौता व्यक्ति जो घर के कमाई करता है, तो वह बिना किसी हैलमेट दे जा रहा होंदा है, एक्सीडेंट हो जाता है। अग्गों जिहड़ी कार दे नाल एक्सीडेंट होंदा, उस बंदे ने ड्रिंक कर रखी होंदी है, शराब पी के रखी होंदी है। सो इस सब दे विच कसूर किसदा है? हुण असीं किसनूं मन्नांगे? जेकर असीं अपने आप नूं सही सुरक्षित रखना चाहुंदे हां तां तद ही असीं अपनी जान दे नाल नाल दूजे लोकां दी जान बचा सकते हैं। जे वह व्यक्ति जो दो पहिया वाहन ते जा रहा सी, अगर वह सिर दे उत्ते हैलमेट पा के चलता, तो हो सकता उसकी जान बच जाती, तो पूरा परिवार जो इस वेले जिसके हालात बहुत बुरे हो चुके ने वह ना होंदे, तो वह गड्डी वाला इंसान जो पता नहीं खुशी या गमी दे विच शराब पी के गड्डी चला रहा सी, अगर वह अजिहा ना करता तां वी इस हादसे नूं टालिया जा सकता सी। सो इहो जिहियां चीज़ां ने जो साडे आस पास वापरदियां ने, ते सानूं उहनां तों सुचेत होण दी जरूरत है। खास तौर पर उहनां माँ बाप नूं ज़्यादा सुचेत होण दी जरूरत है जी, जिन्हां दे बच्चे इस वेले स्कूल या कॉलेज दे विच पढ़न दे लई जाणा शुरू होए ने, क्योंकि वह बच्चे स्कूटर बाइक की ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो इस दौरान वह अणगहली भी करते हैं, बहुत तेज़ गति दे विच स्कूटर नूं बाइक नूं चलाते हैं, और जिहड़ी रैड लाइट है उहनूं जंप करते हैं, जिस करके नुकसान होण दे, एक्सीडेंट होण दे चांसिस वध जांदे ने। और दूसरा उसके पास सब तो वड्डी गल ये है कि उन्हां दे नाल नाल दूसरे लोगों की जिंदगी दे उपर भी खतरा आन पैंदा है। फिर गलत साइड तो ओवरटेक करना बाइक नूं, फिर बाइक की प्रॉपर मुरम्मत नहीं करवानी, अपने हिसाब दे नाल बाइक नूं मॉडिफाई करवा लेना। सो इदां दीआं चीज़ां दे उपर अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं देणगे, तवज्जो नहीं देणगे, तां बच्चियां दी जिंदगी दा सवाल जिहड़ा है उह बण जाएगा। तो उस तों बाद दे विच असीं अगर किसी नूं दोष देवांगे कि सड़क की गलती है जां उस दी गलती है, तां सब तों पहलां इह ध्यान देना पएगा जी कि गलती किस दी है। सब तो ज़्यादा वड्डी गलती जिहड़ी है वह साडी खुद दी हुंदी है। सो इस तरह की कोई भी गलती ना होवे, किसी दे परिवार का कोई भी जी अचानक इहो जिही घटना का शिकार होकर उन्हां तो दूर ना होवे। बस यही एक गुजारिश है जी आप सब दे के जितों तक पॉसीबल होवे असी लोकां दे नाल जो एक प्यार मुहब्बत का रिश्ता उसनूं बरकरार रखते हुए इहो जिहियां गल्लां ते भी असी ध्यान दईए। सो गल्लां दा सिलसिला ज़्यादा लंबा ना करते हुए वधदे हां जी अगले गीत वल। जैनी जॉल की आवाज़ के सुनते हैं अगला ट्रैक लव यू जिंदगी प्रोग्राम ते।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वंस अगेन मिठी जी, गुड इवनिंग दोस्तों। बैक टू बैक एक बार फिर स्वागत है, यानी कि पहला कल भी मैं थोड़े नाल इस प्रोग्राम विच शामिल सी, अज फिर थोड़े सामने मैं आ चुके हाँ जी। हाँ, लैके हाजिर हो चुका जी प्रोग्राम फिल्मी दुनिया। एंड अज फिल्मी दुनिया के एक ऐसे सितारे बारे गल करांगे जिन्हें बहुत सारे हुक स्टैप दिते, बहुत सारे ऐसे गाने दिते कि सदाबहार गाने, मतलब है वो एक्ट्रेस ने बट यस, उन्होंने जिन्हां गाणियां उत्ते अपना जिहड़ा ठुमका लगाया या फिर कह लो कि ऐसे डांस मूव किए ने, किन्ने साल हो चुके ने पर अज भी निके निके बच्चे, सियाने, बुजुर्ग सारे उन्होंने डांस स्टैप कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, आवाज़ विच नरमी, मुस्कान विच जादू अते डांस विच बेमिसाल अदा। जी हाँ, अज का खास प्रोग्राम समर्पित है बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित जी नूं। जी हाँ, माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 नूं महाराष्ट्र के मुंबई शहर विच होया। तो अज उन्हां बारे गलबात करांगे, बहुत सारिया गल्लां ने उन्हां दी परसनल जिंदगी बारे, फिर मूवी करियर बारे, फिर होर भी जो भी उन्होंने कुछ किया। सो आओ सब तो पहला इंजॉय करते हैं उन्हां दी ही फिल्म का एक बड़ा ही फेमस ट्रैक।

जी हाँ, रिश्ता बियो रिश्ता रिश्ता तो वैसे माधुरी दीक्षित ने बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना लिया सीगा अपनी अपनी ऑडियंस दे नाल, अपने चाहण वालिया दे नाल। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम फिल्मी दुनिया तुसी हुण इंजॉय कर रहे हो अपने दोस्त मोहित रूबल दे नाल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते नाल नाल साडी एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एयर दे उपर। सो वैसे पूरे प्रोग्राम दे विच तुहानू एक खास ऑफर मैं दिंदा वां कि तुसी साडे व्हाट्सएप ते माधुरी दीक्षित जी का कोई भी गीत जिहड़ा है वह सानू लेके भेज सकदे हो कि तुसी आह वाला गाणा सुनना चाहुंदे हो। सो मैं की करांगा, जो भी डिटेल जिहड़ी है माधुरी दीक्षित दी मैं दे रहा, थोड़े वाला गाना जिहड़ा है मैं प्ले कर देवांगा। ओके जी, सो जिवें कि मैं पहले दस्सिया कि 15 मई 1967 नूं माधुरी दीक्षित जी का जन्म हुंदा है मुंबई दे विच। उन्हां दे पिता नाम शंकर दीक्षित अते माता जी का नाम स्नेहलता दीक्षित सन। माधुरी बचपन तो ही कथक डांस सीखन लग पई सी एंड सिर्फ 3 साल की उम्र में उन्होंने स्टेज उत्ते अपनी पहली परफॉर्मेंस जिहड़ी है वह दे दित्ती सी। माधुरी दीक्षित जी छोटे हुंदे तो ही एक होनहार विद्यार्थन सन ते वह डॉक्टर बनना चाहते से, पर किस्मत चाहती सी कि बई वह टैलीस्कोप दे नाल स्टैथोस्कोप दे नाल या होर टीकों दे नाल मरीजा का इलाज ना करे, बस अपनी प्यारी जी समाइल दे नाल जो स्क्रीन ते आ जाए ते सैकड़ों लोगों का इको वार इलाज जिहड़ा है कर दे। सो जी हाँ, इस तरीके दे नाल वह बॉलीवुड विच उन्हां दी हुंदी है एंट्री। 1984 दे विच फिल्म अबोध एक माधुरी दीक्षित जी की करीयर दी पहली फिल्म, हालांकि फिल्म जिहड़ी है वड्डी कामयाब नहीं हुई, पर फिर भी लोगों ने नोटिस कर लिया कि बई एक नवी हीरोइन जिहड़ी है वह लॉन्च हुई है एंड उन्हां दी मुस्कान किन्नी प्यारी है, बई उन्हां दी अदाकारी किन्नी ज़्यादा खूबसूरत है। यही कारण है कि लोगों नूं बई नोटिस हो गया कि अच्छा, माधुरी दीक्षित नाम की एक नवी एक्ट्रेस जिहड़ी है वह बॉलीवुड में आ चुकी है। तो उस तो बाद 1988 दे विच उन्हां दी फिल्म तेजाब आउंदी है। तेजाब दा गाना एक दो तीन, वाकई इदा ही एक दो तीन करदे करदे अणगिणत फैन जिहड़े ने वो ऐड हो गए माधुरी दीक्षित जी दे।

जी माधुरी दीक्षित बारे अज असी गल कर रहे हैं। अज उन्हां दा बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे माधुरी मैम। वैसे जदों 1990 दा जिहड़ा दहाका है, अगर उसकी मैं गल करां, क्योंकि उस तो बाद बहुत सारी फिल्मां जिहड़ियां ने माधुरी दीक्षित दियां इन्नियां बा कमाल रहियां, जिवें दिल, साजन, बेटा, खलनायक, हम आपके हे कौन, दिल तो पागल है, देवदास। इन्हां सारियां फिल्मां दे विच जिन्नी खूबसूरती दे नाल माधुरी दीक्षित ने एक्टिंग की, कि घर घर अगर कोई भी कुड़ी फिल्मां देखना शुरू करती सी तो उन्हें लगता सीगा कि मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। ईवन इदां दी एक शायद फिल्म भी आई है कि मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। बहुत सारी कुड़ियों की वाकई ख्वाहिश सीगी कि माधुरी दीक्षित वर्गी बनना। ईवन अगर कोई भी ग्रुप दे विच ना कोई कुड़ी डांस करना शुरू करती सी ते नाल दे ना टोंट भी असीं नाल दे मारदे सीगे, आई वड्डी माधुरी दीक्षित, मतलब किड्डी वड्डी गल हो जाती ना कि तुसी सीधा कंपेयर कितना कर रहे हो दी बेस्ट दे नाल। एंड दी बेस्ट बनने दे लई उन्होंने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की, नो डाउट। अज असीं उन्हां दी सक्सैस की गल कर रहे हैं, पर किवें निक्की निक्की चीज़ ते किन्नी ज़्यादा उन्होंने मेहनत की होएगी, एक एक चीज़ उत्ते, एक एक अपने स्क्रिप्ट दे उत्ते, अपने डायलॉग्स दे उपर, अपने डांस मूव दे उत्ते। सो बहुत सारिया फिल्मां अज असीं उन्हां दीआं कुछ कुछ गल्लां भी करांगे। उन्हां दी बहुत सारी फिल्मां बहुत सारिया चीज़ां दे करके फेमस रही है। एक हुण अगली फिल्म जिहड़ी है साजन, जिहड़ी कि बहुत एक रोमेंट मूवी रही है जिस माधुरी दीक्षित का बड़ा ही प्यारा किरदार जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया।

जी हाँ, माधुरी दीक्षित जी नू बहुत लोग प्यार करते हैं कि मैं हुणे जस्ट अनाउंसमेंट ही की कि अगर प्रोग्राम सुनने वाले भी माधुरी दीक्षित का कोई पर्टिकुलर गीत सुनना चाहते हैं तो मैनू सीधा मैसेज जड़ा है वो आ चुका है। लिखा है गीतकार संगीतकार ये बुलडाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से, सीधा ही जहाँ की वो हैं महाराष्ट्र से उनका मैसेज आ गया है। सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमेध कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल और ये वड़सिंगी बुलडाना से अमोल मानकर, शुभताई मानकर, शलोक दीपाली। ये मैंने ऐसे इसलिए बोला था कि थोड़ा सा मैं देखूं कि भाई प्रोग्राम अभी भी सुना जा रहा है या सीधा रात की फरमाइशी प्रोग्राम में लोग जुड़ते हैं, बट नहीं, बड़ा अच्छा मेरे को लगा, स्पेशली जब इन्होंने मैसेज लिखकर भेजा कि 100 डेज। इस फिल्म के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, ये जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित जी की बड़ी प्यारी फिल्म है जो कि

1991 में आई थी। सो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपकी जो फरमाइश का गाना मैं जरूर प्ले करूंगा। इस तो पहला मैं दस देव माधुरी दीक्षित जी के बारे कुछ ऐसा गल् जोते लोग नहीं जानते। इस गल तो सारे वाकफ ने कि माधुरी दीक्षित जी एक ट्रेन कथक डांसर ने, पर बहुत घट लोग जानते हैं कि वह माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी जी कर रहे। इस अलावा उन्होंने पेंटिंग कुकिंग का भी शौक है। एक समा बॉलीवुड ऐसा आया जो भारत की सब तो ज़्यादा वध फिल्मों के विच फीस लैण वाली अदाकारा बन गई। इस अलावा मशहूर चित्रकार एम एफ हुसैन उन्होंने बहुत व्डे प्रशंसक सन। सो यह गल् शायद बहुत सारे लोगों नहीं पता हो, पर अज के प्रोग्राम क्योंकि अज उन्होंने बर्थ एनीवर्सरी है, सो अननोन फैक्ट्स भी असं शेयर करते हैं। चलो जी, जिमें कि दोस्त ने फरमाइश की कि 100 डेज़ का गाना जोड़ा है माधुरी दीक्षित जी का, लता मंगेशकर जी की आवाज़ के एस पी बाला सुब्रमण्यम जी की आवाज़ के प्ले करते हैं थोड़े सारे लिए।

जी आजा नच ले मेरे यार तू नच ले। सो बहुत एक चंगी ऑलमोस्ट एक डेकेड तो बाद जो माधुरी दीक्षित आजा नच ले मूवी दे नाल वापस आउंदे ने बॉलीवुड दे विच वापसी करदे ने। फिल्म कमर्शियली कुछ खास नहीं कर पाई पर फिर भी लोगों ने जदों माधुरी दीक्षित नूं स्टेज ते दोबारा डांस करते वेख्या तो बहुत सारे लोगों के मूँह चो निकलिया कि धक धक गल जिहड़ी है वह वापस आ चुकी है। तो जो कमर्शियली कोई मूवी काम नहीं करती तो फिर जो एक्ट्रेस ने वो भी थोड़े नैगेटिव हो जाते हैं, जो प्रोड्यूसर ने ज़्यादा हो जाते हैं कि भाई एडे वे स्टार अगर वापस असी लॉन्च किया तो वह गल मज़ा नहीं आया। शायद यही कारण रहा कि उन्होंने अपनी अगली मूवी दे लई काफ़ी समा होर वेट करना पाया। 2007 तो बाद उन्होंने दोबारा जी होर कोशिश की 2014 के मूवी सी डेढ़ इश्किया जिदे नसीरुद्दीन शाह साहब के नाल रोमांस करते एक्टिंग करते नज़र आते हैं। नालों नाल अज की जी नवी पीढ़ी के उमा कुरेशी ने वह भी इस मूवी के ने, अरशद वारसी ने वह भी इस मूवी के ने। उर्दू की डायलॉग डिलीवरी सी अच्छी पोइट्री जी है करनी सी। फिल्म फिर कमर्शियली ज़्यादा नहीं चली बट फिर भी लोगों को एक नवा अंदाज जड़ा है वो पसंद आया। इस तो बाद इन्हों की अगली मूवी आती है गुलाब गैंग जो कि 2014 के सेम ईयर के

नमस्कार, रात दे 8 बजे ने ते एफएम रेनबो ते समा हो चुके हुण एफएम न्यूज़ हेडलाइंस दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज होरमुस जलमार्ग राही सुरक्षित ते बिना रुकावट आवाजाई लई भारत दे समर्थन नू दोहराया है। ईरान दे विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने कहा कि भारत पछमी एशिया विच शांति स्थापित करन विच वड्डी भूमिका निभा

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वंस अगेन लेट वाली गुड इवनिंग दोस्तों। जिंदगी जिंदाबाद। रात के 8:03 हो चुके ने। FM रेनबो ते तुसी प्रोग्राम हुण इंजॉय करोगे जिसका नाम है जी पब्लिक मंच। एंड इस प्रोग्राम नूं तुसी इंजॉय करोगे अपने दोस्त मोहित रूपल दे नाल। तो जनाब, अज दे प्रोग्राम का खास मुद्दा है कि पहली गल तां अज अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस है। सो परिवार की परिभाषा जिहड़ी है समय समय से चेंज हो रही है। परिवार पहला असी पूरे पिंड नूं भी परिवार कह दीदा सीगा, वैसे तो अपना देश नूं भी परिवार कह दिंदे सी, हजे भी किते किते कहिंदे होवांगे, पर मनदे नहीं आ, बिल्कुल मन ही नहीं रहे। दूसरी गल, पिंड नूं कह देना, शहर नूं कह देना, अपने पूरे इलाके नूं कह देना एंड पूरे महल्ले नूं कह देना, लागे छागे अपने शरीकियां नूं कह देना, पर हुण शरीक वर्ड आ गया ना, हुण तां शरीक कहना शुरू करता कि नहीं चाचे ताए नहीं है, तुहाडे शरीक ने। सो बहुत सारिया चीज़ों के ना एक ऐसी मिसकम्यूनीकेशन आ चुकी है या फिर ऐसा दूरिया जड़िया ने आ चुकिया ने कि परिवार की परिभाषा जी बदल गई है। आई नो कि महीने डेढ़ महीने पहला भी कुछ ऐसा ऐसा गलों के उपर प्रोग्राम असी किया, पर अज का प्रोग्राम खास दिन के उत्ते है अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। तो तुम 081-23-42-174 जोड़ा है नंबर डायल करके प्रोग्राम के शामिल होना है। तो गल करनी है कि जो है जोड़े मुल होंगे ने, मुल मतलब कि परिवारिक मुल, या कह लो कि सोहनिया आदत, या फिर कह लो कि जोड़े संस्कार ने, वो जोड़े घटते जा रहे हैं परिवार के, उन्होंने कारण की है, या फिर जो नवी चीज़ा आ गई ने, जिमें एक न्यूकलर फैमिली आ चुकी है, छोटी फैमिली जी है वो बन चुकी है। हूँ कि असी इनू ही मान रही है कि बई हाँ छोटिया फैमिलीज ही रहनगियाँ या फिर वड्डिया फैमिलीज भी सोहनिया सी, हजे भी कोई एग्जाम्पल दे सकता है कि कोई व्डे परिवार के रह रहा। सो जेकर किसी का बहुत व्डा परिवार है वह भी सानू फोन करके दस सकता है कि तुसी किन्ने के जी हो ते तुसी किन्ने सालों तो कट्ठे रह रहे हो। अगर छोटी मोटी गल हो भी जाती है तो किवें तुसी उसका सामना करते हो, तो किवें जड़ा एक प्यार है तुसी बनाई रख दियो। सो बहुत सारिया गल्लां जड़ियां हैं आपां हर एक दोस्त तो करांगे। मैं कोशिश करा कि वध तो वध जिहड़े दोस्त ने प्रोग्राम दे विच शामिल होण। बहुत सारे सवाल मैं लैके बैठा होया, अगर तुसी भी कोई गल अपने वालों भी करना चाहते हो मोस्ट वेलकम। नंबर 081-23-42-174 01-81-234-2174। सो मैं प्रोग्राम दे विच एक दोस्त आ ही चुके ने, आउणा नाल सिद्धा गल करदे हां। हैलो हैलो जी, प्रोग्राम विच तुहाडा स्वागत है सर।
1: हाँ

हेलो हेलो, लगता दोस्त जिहड़े ने फोन मिला के ते बाद विच हेलो हेलो दा जवाब नहीं दिंदे। दया करो जनाब, आपां ही ते गल्लां करनी आ, तुसीं मैनू जवाब नहीं दे रहे, तुसीं अपने परिवार दे विच की जवाब दे रहे होवोगे। ओके जी, सो इस बारे असीं गल करांगे। चलो एक गाने वाल वधदे आ, गाने तो बाद देखदे आ किहड़े दोस्त जुड़दे ने ते की लै के आउंदे ने प्रोग्राम दे विच।

जी दोस्तों, इंजॉय कर रहे प्रोग्राम पब्लिक मंच 102.7 मेगाहर्ट से अपने दोस्त मोहित रूबल दे नाल इस प्रोग्राम नूं इंजॉय कर रहे हो एंड इंजॉय कर रहे हो या फिर कह लो कि अज अपने वैल्यूएबल पॉइंट्स जिहड़े ने एक चंगीआं गल्लां तुसीं साडे नाल सांझीआं कर रहे हो क्योंकि अज असीं सैलीब्रेट कर रहे हां अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। परिवार जिवें कि मैं कहा कि जिन्हां दी असीं परवाह करदे हां असीं उस नूं उन्हां नूं अपना परिवार का हिस्सा मनदे हां। हालांकि परवास ही जिहड़ी पेरेंट्स की करते हैं पर अजक ना बस उदों करते हैं जो गल जी इन्नी ज़्यादा हदों बहर निकल जाए कि बाद महसूस होंगे कि यार पहला क्यों नहीं कन्न धरिया, पहला क्यों नहीं गल्लां जिहड़ियां ने ध्यान नाल सुनिया। तो उदों तो असी सिर्फ सोशल मीडिया मोबाइल फोन दे विच इन्ने ज़्यादा रुझे हुए सी कि गल्लां ध्यान नाल सुनिया ही नहीं। तो जदों हुण गल्लां बहुतियां खराब हो गईयां तो हूँ असं इस ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो समा जड़ा है वह बीत गया तो हूँ तुम इसको ठीक नहीं कर सकते। तो तुम भी सानू उस प्रोग्राम दे विच कॉल मिलाओ, शामिल होवो, दसो कि तुम किवें

0: सर बहुत कुछ है।
1: बहुत कंपटीशन भी है, राइट?
0: यस
1: ओके, अच्छा लगता कि जेकर सरकारा ने समय ते एक ऐसा रूल बनाया कि हम दो हमारे दो, जो कि चंगी गल भी सी, है ना, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: कंट्रोल करनी सी
0: बिल्कुल
1: पॉपुलेशन, पर की हुण प्यार मुहब्बत दे लई भी कि सरकारा नू इंटरफेरेंस करनी चाहिए है, सरकारा नू कुछ वखरा ऐसा करना चाहिए जो कि साढ़े हाथ की चीज़ है, पर की हुण सरकारा ते या प्रशासन ते छड़ दिए, क्योंकि आपसी मुहब्बत प्यार वो भुलदा जा रहा है।
0: मेरे हिसाब के नाल सर, जो सरकार कह रही है कि हम दो हमारे दो, मेरे हिसाब नाल कितने कितने वो सही है।
1: बिल्कुल
0: अगर
1: सही है,
0: आप देखे जाइए कि जनसंख्या साड़ी इंडिया की बहुत ज्यादा है
1: राइट,
0: और रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं है कि, और कंपटीशन ज्यादा पूछो ही ना कि कितना है।
1: राइट राइट,
0: इसी करके मैं कह रहे हैं कि जेडी न्यूक्लियर फैमिलीज नो थोड़ा बुढ़ावा ज्यादा मिल रहा है आज की डेट में।
1: ठीक है। मतलब फिर भी मैं कहूँगा कि वो भी न्यूक्लियर नहीं रह सकती, अगर तुसी की करो, मान लो कि दो बच्चे भी ने, दो भरा भी ने, तो वो कट्ठे ही रहन, वो भी अगों अड अड ना हो जाए, न्यूक्लियर दी होर निकी निकी फैमिली ना तुसी कर दो कि निका एक मुंडा अलग हो गया, दूजा मुंडा अलग हो गया, माँ प्यो अलग हो गए, एक परिवार तो तीन परिवार ते ना बनाओ,
0: बिल्कुल सर।
1: ठीक है ना?
0: सर मैं तो इवन यह जी फैमिलीज नु भी जानता है कि जड़े हुन आप बोल रहे हैं ना कि गवर्नमेंट कह रही है हम दो हमारे दो, आज की डेट भी चाहिए कि हम दो हमारा एक।
1: हाँ एग्जैक्टली
0: वो आजकल दे जो यूथ है जड़े नवे नवे पेरेंट्स बनते ने वो इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे कि वो दूसरा अपना चाइल्ड प्लान कर पाए।
1: राइट राइट राइट, ठीक है यशु जी, तुहाडे नाल गलबात करके बड़ा चंगा लगा। मैं उम्मीद करदा कि अगों तो भी जिहड़े प्रोग्राम असीं पब्लिक मंच वर्गे जिहड़े प्रोग्रामां दे विच वक्खरे एक सीरियस टॉपिक लै के आने आ, तुहाडे वर्गे लोग बड़े जरूरी हुंदे ने साडे प्रोग्राम दे विच, कि क्वालिटी इनफॉर्मेशन एक चंगा योगदान जिहड़ा तुसीं दिंदे हो, सो थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू। सो लो जी, प्रोग्राम दे विच सुन सुने दोस्त जिहड़े ने सुन सुने थॉट्स लै के आ रहे ने, एंड एक एक अपना फस्ट हैंड एक्सपीरियंस, क्योंकि आप परिवारों के रह रहे ने, वो अपनियां गल्लां दस रहे ने, अपने तजर्बे जिहड़े ने दस रहे ने, बड़ा चंगा लग रहा है। प्रोग्राम नू होर मैं कहांगा कि रिच कर रहे ने। चलो अगे वधदे आ, प्रोग्राम दे विच एक छोटा जिहा गीत सुनदे आ, गीत तों बाद दोबारा प्रोग्राम दे विच शामिल होंदे आ। जदों ही मैनूं कॉल आ गई मैं गाणा बंद करके कॉल चुक लैनी है, नंबर 0181 23 42 174, तुसीं फटाफट सानूं कॉल मिलांदे जाओ। मैं कोशिश करांगा कि अगले जिहड़े 21 मिनट साडे कोल बचे ने उहनां विच मैं घट्टो घट्ट 5-6 कॉलां होर लै लवां। फटाफट फोन मिलाओ 01812342174।

नमस्कार, रात दे 9 बज चुके ने एंड एफएम रेनबो ते समा हो चुके हुन एफएम न्यूज़ हेडलाइंस दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होर्मुज़ जलमार्ग राही सुरक्षित अते बिना रुकावट आवाजाई लई भारत दे समर्थन नूं दोहराया है। ईरान दे विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि भारत पछमी एशिया विच शांति स्थापित करन विच वड्डी भूमिका निभा सकदा है। ब्रिक्स मैंबर देशां दे विदेश मंत्रियां ने आलमी शासन विच सुधार लई अपनी वचनबद्धता दोहराई है। नीट यूजी 2026 दी रद्द हुई प्रीख्या हुण 21 जून नूं होवेगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तार जिले दे भोजशाला कंपलैक्स नूं हिंदू मंदिर ऐलान दिता है। हलवारा हवाई अड्डे उत्ते एयर इंडिया की पहली उड़ान दे आउण नाल पंजाब दा लुधियाणा भारत दे व्यापारक हवाबाजी नैटवर्क नाल जुड़िया।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वंस अगेन लेट वाली गुड इवनिंग दोस्तों, जिंदगी जिंदाबाद। जी हाँ दोस्तों, रात दे 9:03 हो चुके हैं, FM रेनबो ते प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है जी दिल चाहता है। इस प्रोग्राम दे विच जिन्हें भी दोस्तों का जेड़ा भी दिल चाहता है कि वह हिंदी या इस पंजाबी फिल्म का कोई गीत जरा सुनना चाहते ने, वह प्रोग्राम दे विच शामिल होण। बड़ा सौखा जिहा तरीका है जनाब, तुसी सानू साडे वट्सअप नंबर 9855107 9855107 दे उपर तुसी सानू मैसेज भेजना है ते प्रोग्राम दे विच शामिल करांगा मैं। सो मैं बहुता समा नहीं लगावांगा, अज मैं कोशिश करांगा वध तो वध मैसेजेस लै के एक नवां रिकॉर्ड जिहड़ा है मैं बना देवां। जिन्हें भी तो सुन रहे ने जनाब, चलो 100 मैसेज भेज दिंदे अज, 87 तो हो ही जांदे ने, अज 100 पूरा करदे आ, ठीक है जी। लो जी, सब तो पहला मैसेज आया जी पिंड हीरांवाली जिला फाजिलका दे पक्के स्रोता सुभाष गुदारा, बिमला गुदारा, इंदू पार्वती, हिमांशु गुदारा। सत श्री अकाल जी, प्रोग्राम दिल चाहता है लाइव सुन रहे हैं, रात नूं सारे काम निपटा के इस प्रोग्राम नाल जुड़ जाने हैं, अज भी कोई भी गीत जिहड़ा है सुना दिओ, ठीक है जी। अगला मैसेज है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो महर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा मूवी धुरंधर ट्रैक जाइए सजना। जनाब आ वाला गाना तो साढ़े को नहीं पहुँचया होया, पर कोई होर गाना जड़ा है मैं जरूर सुना देना। सतिंदर सरताज भाजी का गाना जड़ा है मैं जरूर लगा देना, ठीक है जी। तो कि लाइए वीरवार का नहीं, कोई नवा जहा लाने दिल गाँव का फिरदा रंग मोए पुराना, ठीक है। शायर मूवी का गाना है मोए पुराना, वह मैं जरूर सुना देना। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के मैसेज भेजन के लिए। अगला मैसेज है जी गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला जिला फिरोजपुर पंजाब तो स्वरण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, पोतरे गुरनूर सिंह ते शुभदीप सिंह। फिल्म कभी कभी गीत के बोल तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, क्या बात है, ठीक है जी। अगला मैसेज जड़ा है सर तक पहुँचा, लिखे सत श्री अकाल, फिल्म ठोकर आवाज़ मुकेश, गीत के बोल मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों के ख्यालों में। मैसेज भेजा गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा तो राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, धन्यवाद। अगला मैसेज है जी ठोकर पे है सारा जमाना, जो बन जाए मेरा निशाना, मुश्किल है उसका बच पाना, क्योंकि सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। लो जी, ज़्यादा समय नहीं लगाते, प्रोग्राम का पहला गीत सतिंदर सरताज भाजी होना की आवाज़ के सारे रेडियो सैट पर

0: जी भावें मुसाफिर हो पर कोई गल नहीं, प्रोग्राम सुन रहे हो सानू मैसेज भेजो, साढ़े वट्सअप नंबर 9855 10 10 27 ते, एंड मैं कोशिश करांगा थोड़ी फरमाइश जी जरूर जरूर मैं ऑन एयर करा। अगे वधदे हां, अगे मैसेज आया, दिल चाहता है सो प्रेम नमस्कार जी, आप कैसे हैं, और मैसेज भेजा है छत्तीसगढ़ से, क्या बात, एक तो मैसेज बड़े दूरों दूरों आंदा है, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, माई रेडियो माई लाइफ, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अगे मैसेज आया, आदरणीय जी किसी भी गीत में शामिल करें, शुक्रिया जी, मजनू कटिल्ला से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर और सतना एमपी से, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, माही वे। अगला मैसेज आया, करणवीर हाउस तो, पुचो कैंचिया, बठिंडा पंजाब तो, नमस्कार जी, प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन, अभिजोत, किसी भी गीत में शामिल किया जाए। अगला मैसेज जी, नमस्कार, आपकी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, किसी भी सॉन्ग में हमें शामिल करें, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, सर आपका और आपके परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमेशा हमें मैसेज भेजने के लिए। आगे मैसेज भेजा है, आदरणीय प्रसारक जी सब प्रेम नमस्कार, प्रोग्राम दिल चाहता है फिल्म आपकी किस्म की, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम फिर नहीं आते, नारकोली बाजार जगराओं से, सुनील पाठक, कमर पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गावे मल्होत्रा, भाई सच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, मुझे गाना है, मुझे पसंद है, फिल्म का नाम है आपकी पसंद, तो क्यों ना मैं आपकी पसंद लगा देता हूँ, अगर मेरे को गाना ये ढूंढ गया छेती तो डेफिनेटली मैं लगाऊंगा। यार मिल नहीं रहा, गाने को ढूंढते हैं, जिंदगी के सफर में जो हम जाते हैं जो मुकाम, जिंदगी है जिंदगी, अरे यार बहुत सारे गाने आ गए जिंदगी के। ओके जी, हूँ फिर आप देखते हैं, ठीक है जी, सिंगर लिखे नाम, तुम सिंगर भी लिख देते थोड़ा फायदा बनता मेरा। चलो जी, चलो अगे बढ़ते हैं, कोई होर गाना लभन की कोशिश करांगे, ठीक है जी, या फिर मैनू तुसी जनाब जिन्होंने फरमाइश भेजी है वो मैनू
1: जिंदगी
0: आ वाला प्ले कर देंगे आप, ठीक है जी, जो तुम मैं भेज देंगे हो सिंगर का नाम या फिल्म का नाम दे विच कुछ होर खास तो मैं चेंज कर देवगा। ओके जी, अगला मैसेज, नमस्कार, वड़िंग खेड़ा पंजाब तो, मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, कोई भी गीत सुना दो, ठीक है जी। अगला मैसेज, दिल चाहता है मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद, FM रेनबो जिंदाबाद, दिल चाहता है का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, पेशकारी बहुत ही अच्छी लगती है हमें, किसी भी गीत में शामिल करें, चक 15 PS जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, सरबजीत सिंह जोसन, सरबजीत कौर जोसन, गुरमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया तो, आदर्श पाल सिंह जोसन, एंड वैनकूवर कनाडा तो, रॉबिन सिंह जोसन, हाउ ऑल। अगला मैसेज आया जी, नमस्कार जी, फिल्म परवरिश और रिक्वेस्ट

जी है मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा ओम प्रकाश मल्होत्रा। ठीक है जी। अगला मैसेज करमवीर सिंह पॉल ते पूरा पॉल परिवार सराबा नगर जलंधर तो लिख रहे ने अक्षर दागीर झलक दिखला जा रहे। ओके जी। इदा है कि बई आप बहुत सारे मैसेज पढ़ ले ने, सो फिलहाल असी जिहड़ा मैं गाना लभ्या जिंदगी का सफ़र आप फिर आ वाला प्ले कर दें। ठीक है जी, आओ इंजॉय करते हैं इस गीत नूं।

खूबसूरती नज़ारे हम क्या देखें। ओके आगे बढ़ते अगले मैसेज है जी, फिल्म जिंदगी और तूफान का एक मुकेश और भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से, रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका मन्नत गुरकीरत गुरशबद सिंह राहुल। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी फरमाइश भेजने के लिए। आगे हमें मैसेज भेजा है, सुप्रेम नमस्कार सत श्रीकाल कार्यक्रम दिल चाहता है और स्वर रफ़ी जी और गांधीनगर गुजरात से, अरे गुजरात से मैसेज आया है सुरेश राठौड़ मंजुला राठौड़ विशाल और निशा। ठीक है जी, अगला मैसेज आया, फिल्म दो रास्ते ये रेशमी जुल्फ प्यार भरा नमस्कार हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रजाक मोहम्मद शमी बेगम इमरान खान इरफान खान। ठीक है जी, फिलहाल जिहड़ा गाना है पुजट्टा दे मूवी दा मैं प्ले करन जा रहा। जी दोस्तों, तुसी भी अगर अपनी किसी भी पंजाबी हिंदी फिल्मों का गीत सुनना चाहते हो सानू साढ़े वट्सअप नंबर 9855 10 10 27 भेज दो 9855 10 10 27।

यारा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम दिल जाता है। अगला मैसेज आया है, आदरणीय कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता महोदय जी सादर नमस्कार, कार्यक्रम दिल जाता है, और फरमाइश कर रहे हैं रेडियो श्रोता कृष्ण कुमार ढाबी, भूपत कुमार ढाबी, राधा तवर, सिंधरी जिला बलोत्रा राजस्थान से। थैंक यू सो मच जी। अगला मैसेज है, आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार, आदरणीय प्रसारक जी आप हमारी फरमाइश किसी भी गीत में शामिल करें, आपका तह दिल से शुक्रिया। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साहब राही, महराज हाँ, आज़ाद नगर, लक्ष्य हरिद्वार से। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज है जी, भाई साहब गीत जिंदगी का सफ़र है, ये कैसा सफ़र, सुनाने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जी। और मैं काशमंड जलंधर का 46 साल पुराना लिसनर हूँ जी, इतना मान सम्मान देने के लिए आपका धन्यवाद। सुनील पाठक अनार, अरे सर आप ही की बदौलत और आपके जैसे दोस्तों की बदौलत प्रोग्राम में जो खूबसूरती है वो है, शुक्रिया मत कहिए। अगला मैसेज जी, AIR पंजाबी आपकी पेशकारी का कोई नहीं जवाब, प्रोग्राम दिल चाहता है विच एनी सोंग ला दियो। मित बुरा होया नहीं, पिंड तीजा मोड़ियां वाले तो बंशीलाल संधु मोहन प्यारे बूटा मुंडे जी तो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज, जिंदगी और तूफान गायक ए लगन दे मौसम का हाल दसन देने, क्योंकि कितने कितने तूफान भी आते हैं ना, कस्बा

राणा जिला अंबाला हरियाणा तो रवि कुमार राहुल रंजीत को जयप्रकाश राहुल प्रियंका मन्नत गुरकीरत गुरशिव सिंह राहुल। वाह भाई साहब जी बहुत बढ़िया लग रहा है। अब हंस के श्रोताओं के वैसे नाम और फरमाइश पूरी कर रहे हैं। हंसते रहे मुस्कुराते रहे और हंस आते रहो। अरे वाह ये अलग अलग गलत लिखा गया है पर बड़ा प्यारा लिखा है कि हंस आते रहो कि हंस हंस के आते रहो, क्या बात है। अगे मैसेज आया लिखा है नमस्कार जी सीमा मित्तल पारगो नगर जलंधर तो लिख रहे हैं खट्टा मिठा मूवी दा सॉन्ग जड़ाए ओ ला दियो। खट्टा मिठी दा ना बड़ा सोहना गाना है। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। सोहना सुर लगा ना है ना

आना, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये गाना हमारे बचपन के एक एक एक बातें बतला देगा, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता। जी जरूर, इस गाने को मैं जरूर प्ले करूंगा। चेती करा देना, मेरे को याद करा देना 11:44 के आसपास फिर से। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दाता सिंह शेखावत, संगीता कवर तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, फिल्म अनजाना का कोई भी सुना दीजिए। ठीक है जी, अगला मैसेज है मोहित सर, सत श्रीकाल। हिर जसवीर सिंह दोहरा अडमोर अडमोर, प्लीज प्ले दिस सॉन्ग, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। सिंगर मोहम्मद अजीज, प्लीज प्ले दिस सॉन्ग, जसवीर सिंह दोहरा। ठीक है जी, फिलहाल जेड़ा मैं गाना लभ्या सीगा कि हवा के साथ सा, दोस्तों आपकी भी फरमाइश पूरी होगी। 9855 1010027 पर भेजे मैसेज।

ओ साथी चल, मैसेज भेज प्रोग्राम में। ओके, ठीक है जी। मेरा गम कितना कम है, दुनिया में कितना गम है। ये सर ने ना बड़ा ज़्यादा और ये बड़ी चिरों बाद कुछ ऐसी रिक्वेस्टेड ही आई है, तो मुझे लगता है ये दुनिया में कितना गम है ये हमें सुनाना ही पड़ेगा। अगर मिल गया, दुनिया में कितना गम है मेरा दर। मिल गया गाना जनाब, आपको मैं नाराज नहीं कर सकता जसवीर सिंह जी, आपकी फरमाइश जो है वो पूरी होगी। अगला मैसेज है फिल्म उलझन, सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब, गीत आज प्यारे प्यारे से लगते हैं आप। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। सत श्रीकाल दिल जाता है मोहित रुबल जी, परविंदर सरा, गुनतास, रसनदीप, मनिंदर सरा, पिंड मोरजन, सिखा, हनुमानगढ़, फिल्म परवरिश, गीत बोल, हम प्रेमी प्रेम करना जाने। ठीक है जी, फिलहाल असी प्रोग्राम दे विच अग्गे वधदे हां ते जिहड़ा गीत असी हुण आ चुके हैं इस नूं असी इंजॉय करदे हां। ओ आओ जी थोड़े सारे दी रेडियो सेट ते।

जी दिल का आलम, चलो सारा नहीं बताना, बस इतना ही बता दो भाई साहब या बहन जी, कौन सा गाना सुनना चाहिए हो बे? ओ भी रह गई सात आठ फरमाइशा, फटाफट करो पूरियां। अगला मैसेज, नमस्कार, नोहर राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, आपकी प्यारी प्यारी खूबसूरत पेशकश। फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ, प्यार दर नहीं चकना ओ मखना। अरे यार बड़े चिरों बाद ये फरमाइश आई है। प्यार दर नहीं चकना ओए मखना, ओए मखना टैने। ओके बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ मखना। ओके जी, थैंक यू जी, फरमाइश भेजी है हमें, हमें हमें भेजी है। ओके नरेंद्र सुधार, मनोज सुधार, राजस्थान से। ठीक है जी, अगला मैसेज, नमस्ते सर जी, मैं संदीप धालीवा जंदर से, सोंग ओ सजनी रे। फिल्म मेला बोल, गौरी के हाथ में चांदी का चलाओ, तने को दिल्ली से कमला रानी, भोजराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज, एनी सॉन्ग, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टेलू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक। ओके जी, अगला मैसेज, सुखदेव सिंह जी, क्या बात है मोहित रुबल जी, धन से दिल से धन्यवाद। सुखदेव सिंह, नरेंद्र खो, सनी मनी काका, बिट्टू लाटी, मोहन मास्टर, जनेंद्र जलंधर तो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगर वैसे साडा ना भी बोल दियो जी, गीत कोई भी होवे। मैसेज लिखा है, गायिका कमलजीत नीरू दा गीत रूड़ा मंडी जावे सुना दियो जी, पिंड बड़िंगखेड़ा, जिला श्री मुक्तसर साहब तो भोला सिंह सिद्धू, लाडी धालीवाल जिंदर तो, मास्टर मोहन लाल, शौकी अरविंद कुमार। ठीक है जी, नाम थोड़ा ले लिया जी, हुण आपां सुणदे आ। ओए मखणा, ओए मखणा। जनाब 15 मिनट रह गए ने, मैसेज मैं सारी रीड कर देते ने, फटाफट होर भी मैसेज जिहड़े ने भेजो, ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹਜੇ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, 9855101027, 9855101027। ਹੇ

क्या बात है, लगता कि सदियां बाद मैं गीत जड़ा है सुनिया। सो थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस फरमाइश। अगे वधदे हां प्रोग्राम, दिल चाहता है दे विच कि मैसेज आया तेरे दर पर सनम, सिर्फ इन्ना ही लिख के भेज दिता। ठीक है, फरमाइश ममता संध्या तेजस। ठीक है जनाब, थोड़ी फिल्म का नाम भी लिख देंगे, इदा तो मैं हूँ लभ नहीं पावगा। अगो मैसेज आया मिंटू भाई का, लिखे सानू नाराज करोगे। बई मुझसा मेरा भी गाना सुना दे, फिल्म ठोकर अपनी आंखों में बसा कर। बई इदा है कि मैं फिर रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा मतलब कर लीदा हर एक खुश कदी कदी, है ना। मेरी आंखों में की ही गाना, अपनी आंखों में बसा कर, अपनी आंखों में बसा कर। ठीक है जनाब, ठीक है, ला देने ला देने, नाराज़ नहीं होना। ओके, अगला मैसेज, पिंड झंझेड़ी तहसील खरड़ जिला SAS नगर तो लियाकत अली निशा शाहीन यासमीन अरमान मलिक वालों सारे आकाशवाणी परिवार को प्यार भरी सत श्री अकाल। सानू तुसीं 420 दा रमैया वस्ता वी गाना जिहड़ा है सुना दिता जाए। ठीक है जी, धन्यवाद। अगला मैसेज, पिंड के डाकना निमनाबाद नेड़ो सफीदो मंडी जिला जिंद हरियाणा तो जसबीर सिंह अरोड़ा जतेंद्र कौर गुरप्रीत सिंह लवप्रीत कौर तो करमजीत कौर किसी भी गीत में शामिल करो जी, धन्यवाद जी। ठीक है जी, लो जी फिर आप फिलहाल ठोकर की जी है फरमाइश है मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ 1974 की फिल्म ठोकर का गीत जिसमें लिखा है साजन दहलवी जी ने, कंपोज किया है श्याम जी घनश्याम जी।

चुरा के मुट्ठी में दिल को छुपाए बैठे हैं, चुरा के मुट्ठी में दिल को छुपाए बैठे हैं, बहाना ये है कि मेहंदी लगाए बैठे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। रात 10 हो चुकी ने एंड FM रेनबो ते प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जिसका नाम है जी शामे गजल। स्वाइती महफिल दे विच मैं थोड़ा दोस्त मोहित रुबल इस्तकबाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। सो तुसी भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो, जेकर तुसी भी लिखन दे शौकीन हो तो सानू साडे व्हाट्सएप ते मैसेज भेज सकते हो, शायरी नज़म गज़ल।

जो चुपके से आए बैठे हैं, लाख फितरे उठाए बैठे हैं। वो नहीं है तो दर्द को उनके, वो नहीं है तो दर्द को उनके सीने से हम लगाए बैठे हैं। ये भी कुछ जी में आ गई हो गई, ये भी कुछ जी में आ गई हो गई, क्या वो मेरे बिठाए बैठे हैं। कि रंग जमता है या ना आने का, रंग जमता है या ना आने का, यानी मेहंदी लगाए बैठे हैं। ये खूबसूरत जो गजल मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लिखी है मीर मेहंदी महजरू जी ने। सो जी आओ प्रोग्राम दे विच एक पहली पेशकश जिहड़ी है असीं इंजॉय करते हैं।

इस तरह याद आने से क्या फायदा, इस तरह याद आने से क्या फायदा, मुफ्त एहसान जताने से क्या फायदा। जिस जगह दिल ही झुकता नहीं आपका, जिस जगह दिल ही झुकता नहीं आपका, उस जगह सिर झुकाने से क्या फायदा। कि खत्म कुछ दम में हो जाएगी रोशनी, खत्म कुछ दम में हो जाएगी रोशनी, शमा की लो बढ़ाने से क्या फायदा। कि अपने दुश्मन से वाकिफ तो हैं हम, मगर अपने दुश्मन से वाकिफ तो हैं हम, मगर नाम उसका बताने से क्या फायदा। खुल के हसीए तबाही पे मेरी हजूर, खुल के हसीए तबाही पे मेरी हजूर, जहरे लब मुस्कुराने से क्या फायदा।

कि अपने दिल से मैं करता हूँ अक्सर सवाल, अपने दिल से मैं करता हूँ अक्सर सवाल, उनकी महफिल में जाने से क्या फायदा। और उभरेंगे नक्शे कदम आपके, और उभरेंगे नक्शे कदम आपके, मेरी तुर्बत मिटाने से क्या फायदा। कि नीची नजरें उठाते तो एक बात थी, नीची नजरें उठाते तो एक बात थी, जाम आगे बढ़ाने से क्या फायदा। जिनको आता था वो तो ना आए सईद, जिनको आता था वो तो ना आए सईद, मौसमे गुल के आने से क्या फायदा। बहुत ही खूबसूरत गजल जो है सईद शहीदी जी की लिखी हुई, और सच में मुझे ही पढ़ने का बड़ा ज़्यादा मज़ा आया। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इसको काफ़ी इंजॉय किया होगा। प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो जी शाम एक गजल FM रेनबो यानी कि 102.7 मेगा हर्ट्ज़ से।

बहुत ही खूबसूरत गज़ल जो है सईद शहीदी जी की लिखी हुई, और सच में मुझे ही पढ़ने का बड़ा ज़्यादा मज़ा आया। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इसको काफ़ी इन्जॉय किया होगा। प्रोग्राम तुसी इन्जॉय कर रहे हो जी शाम गज़ल एफएम रेनबो यानी कि 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पे।

102 शारिसत मेगाहर्ट्ज़ से यानी कि एफएम रेनबो ते तुसी एंजॉय कर रहे हो प्यारे प्यारे नगमे प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है दे विच इस प्रोग्राम नू एंजॉय कर रहे हो अपने दोस्त मोहित रूपल दे नाल।

तो सो इसे गीत दे नाल थोड़ी को लवांगा मैं इजाजत, दोबारा फिर मिलेंगे किसी होर दिन किसी होर प्रोग्राम दे विच। थैंक यू सो मच। FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से इसी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वक्त रात दे पूरे 11 बज चुके ने, साडी अज दे सभा दे सारे ही प्रोग्राम हुण इत्थे खत्म हुंदे ने। सवेरे फिर मिलांगे 5:55 ते नवें दोस्त नवें प्रोग्राम दे नाल। तद तक लई सानू दवो इजाजत। शब्बा खैर, जय हिंद।